0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2000

26 इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी

0: के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन, जिसका विषय रहेगा सेहत।

सेहत के बारे में बहुत ही लोकप्रिय पंक्तियां हेल्थ इज वेल्थ अर्थात स्वास्थ्य ही धन है, जिसे अर्जित करने के लिए बहुत अधिक धन निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। संयमित संतुलित दिनचर्या ही पर्याप्त है। बचपन से हमें एक मंत्र सिखाया गया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना, यह भी सेहत के लिए एक अच्छा मंत्र है। लेकिन कितने लोग इस मंत्र को जीवन में आत्मसात कर पाते हैं? जो करते हैं वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, और जो नहीं कर पाते वे समय समय पर बीमार पड़कर शरीर को धीरे धीरे अशक्त करते चले जाते हैं। सदियों पहले तपस्वी लोग सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते थे, क्योंकि उनका शरीर पुष्ट रहता था। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास कुछ युवक ज्ञानार्जन के लिए पहुँचे, तो युवकों को देख कर स्वामी विवेकानंद बड़े निराश हुए। वे सभी युवक कृशकाय थे, बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें सबसे पहले सलाह दी कि जाओ, पहले खेलो कूदो और अपना स्वास्थ्य बनाओ, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे जीवन की निशानी है, और स्वस्थ मन से ही सही ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। स्वामी जी की बात सुनकर युवकों ने उनका कहना माना और अपनी सेहत को जल्दी दुरुस्त कर लिया। फिर स्वामी विवेकानंद से मिले तो स्वामी विवेकानंद ने प्रसन्न होकर उनको जीवन की दिशा के कुछ सूत्र दिए। स्वामी विवेकानंद स्वयं स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहते थे। उनकी दिनचर्या बहुत संतुलित थी, उनका खानपान भी सात्विक था।

था। यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व बहुत सुदर्शन था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने विश्व कल्याण की दिशा में अपना जो योगदान किया उससे भुलाया नहीं जा सकता। उनके साथ जितने युवक भी जुड़े वे सन्यासी हुए। सबके सब अपनी सेहत के प्रति सजग थे। उत्तम स्वास्थ्य विवेकानंद जी का मूल मंत्र था। समाज में अनेक उदाहरण देखते हैं कि बड़े बड़े धन वाले भी अक्सर बीमार मिलते हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं लेकिन सेहत ठीक नहीं रहती। तरह तरह की बीमारियों ने शरीर पर कब्जा कर लिया है। जीवन का सारा सुख वैभव खराब स्वास्थ्य के कारण नष्ट हो रहा है। ऐसी दौलत किस काम की जो हमें उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान न कर सके। हमें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना है, संतुलित आहार लेना है। आइए आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जीवन में आरोग्य का सदा ध्यान रखेंगे। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने उसके लिए क्या अंतर पड़ता है, वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतनी बात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 9:30 और 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 व 11:00 समय रहेगा सुगम संगीत का। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायंकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत, 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

7 बजे समय रहेगा किसान वाणी कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या। 11 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10 बजे समय रहेगा फिल्म संगीत का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

मन मरिया माया मरी तो मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी तो कह गए दास कबीर।

Oh,

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना घनश्याम वसाथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं पूर्वा वोरा। इंटरनेट के द्वारा अनगिनत कार्य किए जाते हैं, जैसे ऑफिस के कार्य, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, रेलवे टिकट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और भी अन्य उपयोग किए जाते हैं। ऐसे में इंटरनेट का उपयोग कुछ लोग गलत और अवैध कार्यों के लिए करते हैं। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर नेटवर्क को बेकार ट्रैफिक और मैसेज से भर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ व्यक्ति, किसी संगठन या सरकार को नुकसान पहुंचाना होता है। साइबर अपराध के कई उदाहरण हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग इसे पैसे कमाने का एक आसान तरीका मानते हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, आंकड़ों के मुताबिक उनकी आयु तकरीबन 18 से 30 साल तक की है। अब हम जानते हैं साइबर अपराध के प्रकार के बारे में। साइबर अपराध में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, सिस्टम को नष्ट करने के लिए वायरस जैसे मेलवेयर बनाना या भेजना, या फिर पैसे कमाने के लिए डेटा चोरी करना आदि शामिल है। इनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं। पहला बात करेंगे हम हैकिंग के बारे में। इसमें किसी के कंप्यूटर के डेटा को बिना अनुमति के गैर कानूनी ढंग से उपयोग किया जाता है। हैकर्स घुसपैठ से किसी के कंप्यूटर सिस्टम की हानि पहुंचाते हैं। यह एक बड़ा अपराध है। अब इसके बारे में हम इसके बाद दूसरी है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग के अंदर अपराधी किसी व्यक्ति की जानकारी उसके बारे में गैर कानूनी ढंग से निकाल लेते हैं और उसे मैसेज या कॉल करके परेशान करते हैं। इसमें अपराधी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाना। तीसरा है पहचान की चोरी। आए दिन इंटरनेट पर कई लोगों के डेटा चोरी हो जाते हैं और कुछ लोगों की बैंक संबंधित जानकारी चोरी हो जाती है, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। ऐसे नुकसान से कई बार ये भी सामने आया है, वह देखने में आया है कि लोगों का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है या उनकी पूरी जमा पूंजी चोरी में चली जाती है। चौथा है वित्तीय अपराध। हैकिंग करके अपराधी लोगों के पैसे चुराते हैं। इस प्रकार वे कंपनियों का डेटा भी चुराते हैं और ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीजों को वो आसानी से अपने तक समेट के रखने की उसमें वो ऐसी सभी चीजों को पूरे सभी सार्वजनिक कर देते हैं और यह वित्तीय अपराध के अंतर्गत आता है। अगला, वायरस द्वारा लोगों की जानकारी पर हमला। साइबर अपराध में वायरस अटैक सबसे बड़ी समस्या है। यह एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में मौजूद सारी जानकारी को नष्ट कर देता है। इसमें किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को दूसरे के सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद में उसकी सभी प्रकार की जानकारी जो उसके कंप्यूटर में मौजूद है वो सभी वो हैकर्स आसानी से अपने पास ले सकता है। अगला है फिशिंग। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति की जरूरी जानकारी निकाल ली जाती है। इसमें झूठे वेबसाइट या ईमेल भेजकर व्यक्ति की जानकारी चुरा ली जाती है। ऐसे में लोगों को अनजान स्पैम मेल में किसी लिंक को क्लिक करने से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा मेल आए जो आपको कहीं से भी संदिग्ध लग रहा हो, तो ऐसे मेल को या ऐसे मैसेज का आप किसी भी तरीके से वापस उनका बदले में कोई जवाब न दें या उन्हें क्लिक करके खोलने की गलती न करें। अगला हम बात करते हैं पायरेसी। पायरेसी में अपराधी डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, जिसके कारण भी काफी नुकसान होता है और उसकी वजह से वो उसी के डुप्लीकेट फोटो या उसके उससे वो पूरे डेटा को आसानी से अपने पास में ले लेता है, जो कि एक गलत चीज है। इसके बाद में सिस्टम पर अटैक। साइबर अपराध कंप्यूटर के सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, जिसे मालवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब ये तो हुई
बात इसके प्रकार की। अब हम बात करते हैं इस अपराध से बचाव के उपाय। कंप्यूटर हैकर्स से कंप्यूटर को बचाने के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपनी वित्तीय या बैंक संबंधी डिटेल किसी से साझा नहीं करना चाहिए और शॉपिंग संबंधित कार्य सुरक्षित वेबसाइटों से ही करनी चाहिए। यूजर्स को एक अच्छा पासवर्ड चयन करना चाहिए जिससे हैकर्स किसी की मेल आईडी हैक न कर पाए। अभिभावकों को अपने बच्चों को सीमित मात्रा में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करने देना चाहिए। आजकल देखने में आया है कि बच्चों का मोबाइल पर इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। वो आए दिन कुछ न कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। यह ही एक फ्रॉड का माध्यम बन चुका है। आसानी से किसी को भी इस तरीके से जाल में फंसा लेते हैं हैकर्स अपने, और फिर उसके बाद में वो उनकी पूरी जमा पूंजी को कुछ ही चंद सेकंड के अंदर वो पूरी बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइटों के पासवर्ड व सेटिंग्स को सही से रखना चाहिए और अपनी निजी जानकारियों को शेयर करने से बचना चाहिए। वित्तीय लेनदेन में सार्वजनिक बैन वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे निजी जानकारी चोरी होने का भय रहता है और किसी भी अज्ञात लिंक को खोलने से बचना चाहिए। कभी आपने ये चीज अगर गौर करी हो कि आजकल ये आम हो चुका है, कहीं पर भी आप शॉपिंग मॉल में या किसी बड़े स्टोर पर, वहां पर आपको वाईफाई फ्री में प्रदान किया जाता है। इस वाईफाई को यूज में लेते हुए भी, इसका इस्तेमाल करते हुए भी आप बहुत सावधानी बरतें। कोई अन्य अगर आपको शो कर रहा हो या आपको अपने मोबाइल में दिखाई दे तो उसका इस्तेमाल न करें, उस पर क्लिक न करें। साइबर अपराध से केवल व्यक्ति नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत भयंकर खतरा है। यह व्यक्ति, संस्थान, यहाँ तक कि सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें न केवल व्यक्तिगत जानकारी बल्कि राष्ट्रीय जानकारियां भी चोरी हो जाती है। अतः साइबर अपराध को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी सतर्कता के साथ करें। हमेशा सोशल मीडिया इत्यादि के पासवर्ड और सेटिंग को सही रखें, वो हमेशा सतर्क रहें। हमेशा

यह ध्यान में रखें कि संदेश कहां से आया है, उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करें। इंटरनेट का उपयोग सिर्फ ज्ञान विकसित करने के लिए करना चाहिए, न कि गलत चीजों के लिए। साइबर सुरक्षा सिस्टम नेटवर्क प्रोग्राम डिवाइस और डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण का अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करने और सिस्टम नेटवर्क व प्रौद्योगिकियों के अनाधिकृत शोषण से रक्षा करना है। अब हम बात करेंगे इससे बचने के कुछ तरीकों की। जैसे आप अपने मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, हर खाते के लिए अलग पासवर्ड व उपयोगकर्ता नाम संयोजन बनाएं, कमजोर पासवर्ड न बनाएं। दूसरा है, सोशल मीडिया को निजी रखें। आपके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर ऑनलाइन पोस्ट करते वक्त सावधानी बरतें। तीसरा है, अपने संग्रहण डेटा को सुरक्षित रखें। अगला है, ऑनलाइन अपनी पहचान की सुरक्षा करना। किसी की भी व्यक्तिगत आईडी देते हुए पहले उसकी पहचान सुनिश्चित कर लें। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करते समय आपकी गोपनीयता सेटिंग्स को अनुमति देना भी शामिल है। अगली सावधानी रखें, अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें, ताकि हैकर्स का आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। और अपने फोन को सुरक्षित रखें, यह सुनिश्चित करें कि आप केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अज्ञात स्रोतों से डाउनलोड न करें व अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अद्यतन रखें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कभी न भूलें। कभी कभी हैकर्स आपके जीपीएस के जरिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपकी हर गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। जब भी कभी दुर्भाग्यवश कहीं फंस जाए तो मदद के लिए सही व्यक्ति को चुनें, मतलब स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट जरूर दें, वह आपकी जरूर मदद करेगी। साइबर अपराध पर सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। अपनी कंप्यूटर को सुरक्षा सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखें। सुरक्षा सॉफ्टवेयर में फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। इसके कुछ नारे भी प्रचलित हैं, जैसे कि क्लिक करने से पहले सोचें, सुरक्षा पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन, अपना डिजिटल यात्रा को सुरक्षित रखें। तो स्वस्थ रहें व सुरक्षित रहें।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता। वार्ताकार थी पूर्वा वोरा। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

0: तक आप पहुंचे।
1: फिल्म काला पानी से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।

0: दोगुना प्यार डबल मजा।
1: फिल्म लूटमार से अभी आप ये गीत सुन रहे थे, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: इंसाफ का तराजू इस फिल्म से। अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के संपन्न होता है। ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: घर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ग्रेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में

0: पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
4: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर आप तरीके से चर्चा, उनकी मुख्यता तीन डिमांड थी और पांच सुझाव।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
5: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी, ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि यह दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रीशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: Not the result of any deliberate action by India.
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20

0: मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया।

0: कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है, सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है, केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 96.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातों के 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

आंगन में तुलसी, छत पर चांद, दालान में दादी की कहानी, ऐसा घर कहाँ मिलता है अब। मोबाइल की घंटी में खो गई नानी। सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, घर सिर्फ ईंट पत्थर और सीमेंट का नहीं है। घर वो जगह है जहां दिल को सुकून मिलता है, जहां माँ की आवाज, पिता की डांट और बचपन की शरारतें बसती हैं। दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए पर घर जैसा कोई ठिकाना नहीं।

0: जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार
2: श्रोताओं, घर दीवारें नहीं एहसास है। घर वो झरोखा है जहां से हम दुनिया देखते हैं और दुनिया हमें देखती है। घर में रोटी के साथ प्यार मिलता है, थकान के साथ आराम मिलता है। घर मतलब अपनापन।
3: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

श्रोताओं, बचपन का घर जहां पहली साइकिल, पहली डांट मिली, सुरक्षा का घर जहां बाहर तूफान हो पर घर में चैन की नींद आती है, संस्कार का घर जहां बड़ों का आदर करो, सच बोलो, ये सबक घर से ही मिलते हैं।

श्रोताओं, पहले घर में आंगन होते थे, चौपाल होती थी, अब फ्लैट है पर बात नहीं। व्हाट्सएप पर सब जुड़े हैं पर घर में दो मिनट बात नहीं। हम घर तो बना रहे हैं पर घर खो रहे हैं।

श्रोताओं, पैसा कमाकर बड़ा बंगला बनाया जा सकता है, पर घर नहीं। घर बनता है प्यार से, त्याग से, साथ बैठकर खाए खाने से। इसीलिए घर जाओ, माँ के हाथ का खाना खाओ, पिता के साथ बैठो, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देगी तब सिर्फ घर ही साथ देगा। घर वो नहीं जहां हम रहते हैं, घर वो है जहां हमारा दिल रहता है।

थक कर जब दुनिया से लौटो, सुकून का दरवाजा घर ही खोलता है। गिर जाओ तो माँ का ही हाथ फिर से चलना सिखाता है। श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत शिल्पी माथुर के स्वर में।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत शिल्पी माथुर के स्वर में, प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा आज राज्य में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में आज अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले ढाई वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा जयपुर के ओटीएस में भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित समारोह में इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त मौजूद रहेंगे। भारत टैक्सी सेवा देश की पहली सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सेवा है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से संचालित किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव ने वर्ष 2024-25 और 25-26 की लंबित घोषणाओं के कार्य में तेजी लाने और वर्ष 2026-27 की घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने को कहा। उन्होंने भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने, अगले 3 महीने में सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने और 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं की प्रगति नियमित रूप से सीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी परिवारों के सर्वे की अवधि कल तक बढ़ा दी है। आयोग के सलाहकार अशोक कुमार जैन ने बताया कि कई जिलों में सर्वे का काम अभी बाकी है। इसे देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को कल तक सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आयोग को अपनी अनुशंसा रिपोर्ट निर्धारित समय पर राज्य सरकार को सौंपनी है। राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा रहे इस सर्वे के आंकड़ों के आधार

0: आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित अनुशंसाएं तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। नेशनल परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये अपने पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में पिछले ढाई वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र और वंचित लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया है। उन्होंने यह बात जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि गिव अप अभियान के माध्यम से रिक्त हुए स्थानों पर पात्र परिवारों को जोड़ा गया है ताकि कोई भी जरूरतमंद खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे।
2: सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने का जो अभियान चलाया गया था उसी से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में भी हमें इस तरह का अभियान चलाना चाहिए और वो अभियान हमने शुरू किया 1 नवंबर 2024 को। और मुझे बताते बड़ी प्रसन्नता है कि उस अभियान के तहत आज दिनांक तक 93 लाख लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से शीर्षक से बाहर हुए, 67 लाख लोगों द्वारा गिवअप किया गया और 27 लाख लोगों द्वारा गिवअप अभियान के तहत ही जो उसमें था कि EKYC अंगूठा लगाना जरूरी है तो बहुत से लोगों द्वारा कि उन्हें पता था कि हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, EKYC नहीं करेंगे तो अपना से बाहर हो रहे हैं, तो इस पर 27 लाख लोग बैठे तो कुल मिला के 93 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिरफ्त किया गया।
0: राज्य पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तीसरे सप्ताह में 41,923 महिला श्रमिकों और 7,834 बुजुर्ग महिलाओं से सीधा संवाद किया गया है। पुलिस टीमों ने कच्ची बस्तियों, कारखानों, निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों और प्रवासी बस्तियों में पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा, उनके अधिकार और साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी। अकेले रह रही बुजुर्ग महिलाओं और दंपतियों के घर जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी गयी। राज्य पुलिस ने आपात स्थिति में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 पर संपर्क करने की अपील की है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि जिन अस्पतालों में प्रसव होते हैं वहां के स्त्री रोग विशेषज्ञों को मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए अगले 5 दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में सभी 108 एम्बुलेंस में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए एंटी शॉक एनएएसजी गारमेंट उपलब्ध कराने और पैरामेडिकल कर्मियों को इसका प्रशिक्षण देने के

0: निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निदेशालय स्तर पर कैंसर सेल गठित करने, कैंसर स्क्रीनिंग वैन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अगले चार दिन के मानसून सक्रिय रहने और कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश जबकि कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से प्रभाव से ये स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर सहित करीब 20 शहरों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू में सबसे अधिक 195 मिलीमीटर और पाली में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। बीकानेर जिले के लूणकरणसर में कंवरसेन नहर का चौनल टूटने से करीब 300 बीघा में खड़ी मूंगफली और कपास की फसल प्रभावित हुई है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कारगिल विजय की 27वीं वर्षगांठ पर राज्य सैनिक बोर्ड आज जयपुर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजन का सम्मान करेगा। ये समारोह बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में सप्तशक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा मुख्य अतिथि होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले ढाई वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
3: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
4: थैंक यू मैम। थैंक यू।
3: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
4: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
3: हाँ, इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही है, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में है। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा।
4: जी।
3: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
4: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहां पे हॉकी बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गांव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरी मम्मी

जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा गाय भैंस का जो काम होता है मैं पापा और भाई मिलकर करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता।

0: घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था, तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे, तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था, तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
1: अच्छा
0: जी, फिर हमने मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट, तो वहां पे मैं सेकंड आई थी। गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
1: गवर्नमेंट होती है ना
0: जी, डिसिप्लिन एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी।
1: अच्छा जी, 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
0: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूं और घर वापस चली जाऊं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप अच्छा लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे सी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ल्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी, उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं बोल। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रूपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे दो गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में दो ही किट आती है, या तो आपको
1: आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना
0: जी। मेरे पापा जॉब करते थे बट 8,500-9,000 रूपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रूपए ऑलमोस्ट दो महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी, काफी रोई मैं। पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
1: आपने काफी गोल बचाए
0: जी। तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रूपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है, तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है।
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की जब उसके बाद आप साई अकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उसमें आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया है, तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो, तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मे भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहां नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है बट वो चीज सच हुई, एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं।

0: करके जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने नौ नौ गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
1: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई, अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की और कोचिज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे बट उनको एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
0: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
1: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
0: और आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
1: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज ए
0: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
1: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ। और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये

0: मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब वो छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है। बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्र गुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप कि प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी, और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी। और मैंने कहा नहीं, 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं। तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहाँ पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी
1: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहां। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मम्मा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती?
0: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना कहना आसान है
0: मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर, तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज।

0: एम्स ऑल राइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं, उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पर उतरेंगी जो आप गोल बचाती आई हैं वैसे ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

इन संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहाँ आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जीएस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

1963 में जीएस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहाँ एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं, माना मेरे हसीन सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था, माना मेरे हसी सनम तू रश के

के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं न कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं न कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

0: 60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संगदिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।
1: हाँ।

25 जुलाई 1996 को जी एस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जी एस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बने।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा, लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची, तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसके आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

सुधा को पसंद था, क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है, क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ ठोकरे खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था, क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई, तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची, तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वो अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची, तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आते हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारी

जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही।

उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक है? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती है? जी। कितने घंटे? 3-4। बस? और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों? कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है, हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

बाद जब सुबह ऑफिस पहुंची, तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन न आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूँ बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे कैबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपनी पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप, अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मैं सुधा, ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो, मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा,

नहीं नहीं, वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऑफिस में आपने ओवर टाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नज़र बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊँ, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान, ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूट कर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद

पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई। जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरडिया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस ने मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर पापा की तबीयत कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा। क्यों? सर मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूँ, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है, रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ। रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा। सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

सामुदायिक शक्ति शुलो 3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे फाल्गुनी पाठक की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना फाल्गुनी पाठक की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत। अब पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आगाज करते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से, ऋतिका, फरहान, अभय और मारिया की आवाज में गीत, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: There's something about tonight.
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली पेशकश। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बनी दयाल, सुनिधि और नाजिया हसन की आवाज में गीत। बोल हैं अमिता दत्त के और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कॉकटेल फिल्म से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में गीत। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं दावत इश्क फिल्म से जावेद अली और सुनिधि की आवाज में गीत। बोल हैं कौसर मुनीर के और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में गीत। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

इन मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजने को है। कुछ देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को यह जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित

0: जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

अनजान के बोल आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। डॉन फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। और आपको ये बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अरे लड़के एक कदम पीछे,
1: अरे बैठ,
0: झूम के पीछे घूम और नट दे भाली।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: लोग बजाएंगे खुश होकर थाली,
1: ताली ताली ताली ताली रे,
0: झूम के पीछे घूम।

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आवाजें आशा भोसले मन्ना डे की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कौन लाया, कौन लाया?
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा,
1: छुपाए रखा, शोला दबाए रखा,
0: उसने हमें

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और आवाजें किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

हसर जयपुरी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राहुल देव बर्मन का संगीत गोलमाल फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। घर फिल्म से ये गीत सुनिए।

किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कर माफ कीजिएगा यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम रोज एक टेक्स्ट या इबारत फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और इनमें वो शब्द शामिल होते हैं जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आज की इबारत या टेक्स्ट क्या है ये आपको पढ़कर सुना देते हैं और हमारे बहुत से साथी जो फेसबुक पेज पर हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने तो इसे पढ़ ही लिया है और अपने कमेंट्स भी देने लगे हैं। अगर आपके कमेंट्स आप कैसे भेजें ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फेसबुक पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की पेज पर जाना है। इसके लिए आप www.facebook.com/vbsmumbai पर जा सकते हैं या अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और देवनागरी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज और यहां पर आपको पोस्ट दिखाई देंगी जो विविध भारती के कार्यक्रमों से संबंधित सारी पोस्ट यहां आती है और रोजाना सुरीला सफर की पोस्ट भी यहां आती है जिसमें कमेंट करके आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आज की इस कार्यक्रम की इबारत है कि कभी कभी जिंदगी निराशा की जमीन पर चलती है, कभी खुद पर रोना आता है तो कभी हालात ही ऐसे होते हैं। मन नकारात्मकता से यूं जुड़ता है या कहें कि यूं जूझता है कि ऐसा लगता है मानो ये नहीं होता तो कोई और गम होता। आंखों के आंसू सपनों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, भूली हुई यादों की परछाई भी हमारे आज को डराती है, पर क्या यही है सच्चाई? क्या इस नकारात्मकता से बाहर निकलने की नहीं है कोई राह? एक कदम बढ़ाकर तो देखो, मिलेंगे कई हाथ तुम्हें थामने को, ये साथ मांग कर तो देखो। तो ये है हमारी आज की इबारत। और कई बार जीवन में ऐसे वक्त आता है जब हमें लगता है कि किसी भी तरह की कोई उम्मीद या कोई आस बाकी नहीं है, लगता है कि कोई भी नहीं है जिसे हम अपनी बातें बता सके, अपना गम जिससे बांट सके।

सुविचार भी आपने हम तक भेजे हैं। ये सारी बातें लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते चलते हैं और हमें बताइएगा आप कि किस फिल्म का ये गीत है और साथ ही बताइएगा कि कौन सा आपका पसंदीदा दुखी गीत है।

हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब, और हमने आपसे ये भी पूछा था कि कौन सा ऐसा दुख भरा गीत है जो आपको बहुत पसंद है। भले ही आप निराश हो, दुखी हो या ना हो, कभी कभी हमें दुख भरे गीत भी अच्छे लगते हैं। तो हमारे साथियों ने भेज दिया है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंसू भरी है जीवन की राहें, और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म दूर गगन की छाओ में के गीत के बोल हैं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिलवाले फिल्म में मुझे एक गीत बहुत पसंद है, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, एक बेहतरीन गीत है, तो इनकी पसंद ये गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सरल शब्दों में कहें तो सकारात्मकता जीवन को आगे बढ़ाती है और नकारात्मकता इंसान को पीछे की ओर खींचती है। सकारात्मक सोच में हमेशा आशावादी रवैया, समाधान पर ध्यान और दूसरों की मदद करने पर होता है, जबकि नकारात्मक सोच में निराशावादी रवैया, शिकायत करने और ईर्ष्या की भावना रखना और हिम्मत हारना ये होता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक साथी ने कहा कि निगेटिविटी, निराशा से हरदम दूर रहना चाहिए, खुद को पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं, समय संजोग की बात है, खुश रहना चाहिए, जो पल खुशियां दे उसे याद रखना चाहिए और उस पल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। गीत वो कह रहे हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। हमारे एक और साथी हैं कह रहे हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इस तरह का रवैया हमें रखना चाहिए। एक और साथी कहते हैं कि आज गद्यांश में गम, आंसू, यादें, निराशा जैसे नकारात्मक विचारों से मन को सकारात्मकता की ओर कैसे ले जाया जाए, यही बात कही गई है। गम, निराशा, उदासी और अकेलापन जीवन के अनचाहे मेहमान जरूर हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। निराशा के क्षणों में कृतज्ञता मन के अंधकार को मिटाने वाला सबसे अचूक दीपक है। सकारात्मकता एक दृष्टिकोण है जो आपके भीतर सोई हुई रचनात्मकता को जगा दे और अपनी जीवन ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। तो बहुत सी बातें हमारे साथी भेज रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि नकारात्मकता या निराशा की भावना अक्सर आ सकती है हमारे मन में। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आ सकती हैं, कभी कुछ परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं जो इस तरह की नकारात्मकता हमारे मन में ला देती हैं। कभी कभी कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी इस तरह का भाव हम हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो इसलिए भी इन सारी चीजों का भी ध्यान देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर कभी कभी निराशा या ऐसा नकारात्मकता लगे तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा लगता रहे एक लंबे समय तक तो इसके लिए पूरी जांच पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है। और ये भी हमें जांचना जरूरी है कि क्या आपको पता है कि ये जो गीत हम सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है और कौन है इसके संगीतकार। तो बताइए गीत सुनकर।

माई लव फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत। तो संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथियों ने तो ये भी बताया कि शशि कपूर पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारी एक और साथी कहती हैं कि मैं बहुत खुश मिजाज नेचर की हूं, हर समय हंसती बोलती रहती हूं, पर गीत मुझे सभी दुखी वाले ही पसंद हैं। भाई ये बात तो एक अलग चीज है कि भाई दुखी गीत पसंद है लेकिन दुखी रहना पसंद नहीं है तो फिर चलाया जा सकता है। वैसे हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई मन की बात तो सबसे कहना मुश्किल होता है। और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं दुख के बारे में बातें जब कर रहे हैं तो अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई दुखी होना तो सभी के लिए स्वाभाविक है, सब हमेशा खुश तो नहीं रह सकते, लेकिन दुखी ही बने रहना ये एक प्रवृत्ति है जिसे हम बदल सकते हैं। और हमारे एक और साथी हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से गीत पसंद है। वैसे एक साथी ने कहा कि भाई आज की भारत में सभी गाने बहुत दुख वाले हो सकते हैं पर कभी कभी सैड सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। जीवन सुख दुख का मेला है आज के शब्द उन्होंने चुने हैं और कहा है कि भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, कोई हमदम न रहा, वो तेरे प्यार का गम, ये भी इसकी लिस्ट में शामिल गीत था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, और मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह, ये गीत इन्हें पसंद है। तो जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, इस गीत के बोल को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमेशा क्या किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं जिससे मिलने के बाद हम उदास हो जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या वो हमें बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं हमारी, या किस तरह से हमारे साथ उनका व्यवहार होता है जिसकी वजह से हम इस तरह से उदास हो जाते हैं, या उनकी उदास प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उदास होते हैं। तो इस बात पर भी गौर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मित्रों की तरह मिलते हैं लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उन्हें आलोचना करने की इतना आदत होती है कि

ज्यादा निराश कर देते हैं, तब कुछ सकारात्मकता से भरे मन को सुकून देने वाले गीत उस स्थिति से निकलने में मदद करते हैं। तो एक ऐसा ही गीत क्यों ना आपको सुनवा दिया जाए, क्योंकि भाई आपको दुखी करना तो हमारा इरादा नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको दुख होता है और मन निराश होता है। क्या कभी ऐसा लगता है? बहुत से साथी कहते हैं कि दूसरों से ज्यादा लगाव रखने की वजह से हमारा मन कई बार दुखी होता है। क्या सच में ऐसा होता है कि दूसरों से ज्यादा लगाव रखना या दूसरों से ज्यादा उम्मीदें करना, ऐसी उम्मीदें जो हमारी उम्मीदें हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं? तो जरा सोचिए और इस बारे में बताइए। तब तक हम आपको गाना सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला, और इसके बारे में आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और आवाज किसकी है।

0: अपने अंदर रखते हैं तो वो सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गम और आंसू की बातें और गाने इंसान अपने मनोभावों को कभी व्यक्त कर पाता है तो कभी नहीं, खासकर जब बात गमों की हो। वो मन ही मन अपने हालात से जूझता रहता है और तब तन्हाइयों में वो दर्द आंसू बनकर बहता है। किसी को पाने के बाद खोना और मिलने के बाद बिछड़ना। कहते हैं कि जब दर्द आंसू से छलकता है, मतलब इंसान जब रो लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। दर्द भरी यादें कभी तो ताउम्र सताती हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने मनपसंद कार्य में मन को लगाए। समाज सेवा, पशु पक्षियों की सेवा या गीत संगीत सीखे, गुने सुने, गाएं, व्यक्त होने से उस दर्द को कम कर सकते हैं। तो हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि राहें बंद नहीं होती, बस नजर का दायरा कभी कभी छोटा पड़ जाता है। एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत हो जिंदगी का पासा पलट देती है ये हिम्मत। जिंदगी के कैनवस पर अगर आज काला रंग गहरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रंग खत्म हो गए, उस ब्रश को उठाने और एक नया रंग भरने की देर है। तो सकारात्मकता से भरे ये संदेश हमारे साथी भेज रहे हैं और हम आपसे यही जानना चाहते हैं किस तरह से आप सकारात्मकता से सामना करते हैं अपने जीवन में कोई भी परेशानियों का, कठिनाइयों का। और दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि हमारे साथी कहने की भी दुख ही होते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं, वो भी चलिए कोई बात नहीं अगर ये काम एक आध दिन हो रहा है, लेकिन लगातार अगर यही हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि बाहर निकलें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा या आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। कभी कभी हमारे मन का वहम होता है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से, किस परिस्थिति में हैं, किस निराशा से जूझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो बात सुनते हैं। और सुख दुख की बात अगर हम कहें तो भाई सुख दुख से संबंधित ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत आपको सकारात्मकता का संदेश तो देगा ही। और फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताने वाले हैं।
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे न को फिर

चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हालांकि जो चीजें नहीं पूछी थी उसका भी सही जवाब दिया है। और इस बात से खुशी तो हुई ही जाती है कि हमने जो पूछा, आप कितनी अच्छी तरह से अपनी जानकारियां हमसे बांटते हैं और साथ ही अपने जीवन की बातें भी हमसे साझा करते हैं। हमारे साथी ने कहा कि आज की इबारत में जीवन की सच्चाई को दर्शाती है, जीवन की राह बहुत कठिन है, खुशी कम, दर्द बेशुमार है, दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि आंसू बहाने का समय नहीं, कोई भी कदम उठा, रास्ता बना, कोई साथ चले न चले, कहीं तो मंजिल मिलेगी, जैसे नदियां कल कल बहती रास्ता बना लेती हैं। गीत उन्होंने बताया है, किसी राह पर किसी मोड़ पर, ये गाना उन्होंने अपनी पसंद का इसमें शामिल किया। हमारे एक और साथी कह रहे कि जब जिंदगी की जमीन बंजर और निराशा से भरी लगने लगती है तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि तकलीफों का यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन रात चाहे कितनी भी घनी और लंबी क्यों न हो, वो सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह की सकारात्मकता जब

मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर और बात हो रही है कि जब निराशा हमें घेरती है तो हम क्या करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मिल जाए किसी प्यारे से दोस्त या किसी अपने का थोड़ा सा साथ या थोड़ा सा सहयोग तो हमें लगता है शायद कोई इंसान इस परेशानी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें दौलत से नहीं बात करने से भी संभल जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभार मन किसी जाने अनजाने दुख से या यूं ही निराश होकर उसी में डूबता चला जाता है, कभी कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे में उस जगह से उठकर थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी चहलकदमी करें, एक दो लोगों से कुछ हल्की फुल्की बातें करके मन को बहलाएं, मन को कहीं और लगाएं तो कुछ मन हल्का हो जाता है, वरना जितना डूबोगे मन इतना ही डूबता जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक ही जगह पर बैठे रहने से भी कभी कभी वो बात हमारे मन से निकलती ही नहीं, तो जरूरी है कि हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें या उठकर बस एक चार पांच कदम भी अगर हम चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस विचार से निकल पाते हैं और कुछ और भी सोच पाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत हमें जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं के साथ ही सकारात्मक सोच की तरफ ले जाने के लिए सक्रिय कर रही, किंतु सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई सकारात्मक पहलुओं के करीब अवश्य ही है, और जैसे नकारात्मक ऊर्जा हमें सकारात्मक सोच की तरफ इशारा किया करती है, हम उससे ही उसकी सहायता से ही अपनी सकारात्मक सोच की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह हमें सकारात्मक सोच से भी बचते हुए उस अद्वैत आनंद की इबादत से ही ओतप्रोत रहते हुए संदेश देते हुए स्पष्ट करता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी जो भी वस्तु है वो गोविंद यानी भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं और उन्हें ही हम समर्पित कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही जीवन के एक पहलू हैं और इन्हें बदलते रहना चाहिए। जैसे कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, उसी तरह मन के विचारों को भी एक ही तरफ एक ही जगह पर बचाकर या जमा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे साथी कहते हैं कि निराशा हर किसी के जीवन में आती है, अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आत्मबल है कि वो

को संसार के रचयिता पर विश्वास करते हुए नकारात्मकता को छोड़कर उस निराशा को आशा में बदलते हुए फिर से हिम्मत करके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और जो निराशा का ही दामन थामे रहते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए आशावान रहना ही जीवन की सच्चाई है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन की निरर्थकता का बोध ही घोर निराशा और नकारात्मकता है। कभी कभी मनुष्य अर्थहीनता की स्थिति से जूझता है तो मनुष्य का चेतन और अवचेतन दोनों ही पीड़ा से घिर जाते हैं। जीवन इच्छाओं और संभावनाओं का अनंत सागर है, इसलिए जीवन में दुख और निराशा उत्पन्न होती है। मनुष्य का अवचेतन मन दमित इच्छाओं का मार्ग है। जागृत अवस्था की नकारात्मकता जब मानसिक प्रतिरोध तोड़ देती है तो स्वप्न में दबी हुई पीड़ा अवसाद और आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो जरूरी तो यही है कि उस पीड़ा, उस निराशा, उस नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया जाए। और जरूरत तो ये भी है कि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रखा जाए। तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं और इस गीत को हमने लिया है सीमा फिल्म से। ये बताइए कि इसमें नजर कौन आती है।

सीमा फिल्म का ये गीत सुना और इस फिल्म में और इस गीत में नजर आती हैं नूतन शुभा खोटे के साथ। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म चित्रलेखा के गीत के बारे में उन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की भारत का सारांश है कोई क्या जाने पीर पराई। और हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये गीत जब दिल टूटता है तो आशिक लोग गाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और गीत के बारे में ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मात्राधिक आशा ही कष्ट का कारण है, सबसे कष्ट और निराशा अपने कार्यरत आत्मनिर्भर बच्चों के फिजूल खर्ची से होता है। 8,000 के जूते क्या मुकुट है जो सिर पर पहनना है। मैं देखिए ये भी एक कारण हो जाता है कभी कभी, जब हम ये सोचते हैं कि इस चीज की क्या जरूरत थी, हो सकता है किसी और के नजरिए में उस चीज की उन्हें जरूरत हो, सकता है वो ज्यादा उन्हें आरामदायक लगते हों या कुछ बातें हों, उनके मन के बारे में भी जानना जरूरी है। कभी कभी हम दूसरे ने क्या किया ये बात जब देखते हैं तो इससे जो दुख हमारे मन में आता है या बहुत सी असंतोष पैदा जब होता है तो ये भी दुख का बड़ा कारण होता है जिसका निवारण हमारे हाथ में ही होता है। हमारे कोई साथी कह रहे हैं कि जब मन दुखी उदास और निराश होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और चारों तरफ अंधेरा या खालीपन सा महसूस होता है, तब मुकेश जी का गाया गीत याद आता है, जाऊं कहां बताए दिल दुनिया बड़ी है संग दिल। वहीं हमारे साथी का कहना है कि अपनों से बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा निराश करता है, पर ये गीत उसके लिए परफेक्ट है। किसी जो भी गीत उन्होंने सुना उसमें से एक गीत के बारे में ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों का दुख दर्द देखकर मेरा दिल गहराई से भर उठता है, जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूं तो उसकी वेदना जैसे मेरी अपनी बन जाती है, मन इस कदर भावुक होता है कि पूरे दिन उदासी की गहरी परत सी छाई रहती है, सोचता हूं कि काश मैं हर किसी के आंसू पोंछ पाता। आज भी ऐसा ही हुआ, किसी की पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया और पूरा दिन एक अनकहे भारीपन और उदासी में बीत रहा है। अति संवेदनशीलता भी कभी कभी हमारे दुख का कारण होती है, तो उनके लिए अगर हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये देखिए एक बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि भाई हर एक व्यक्ति का दुख दूर करना या हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर करना तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, तो इस वजह से हम तो केवल मानव हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हर चीज कर लेना हमारे बस की बात नहीं है और इसलिए दुखी होना भी ये हमारे बस में है कि हम इसलिए दुखी ना हो। हमारे एक और साथी कहने कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं, सुख के क्षणों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन जब कठिनाई आती है तब परिवार ही है जो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखता है। गीत उन्होंने बताया बाहरों मेरा जीवन भी संवारो। हमारे एक और साथी कहने कि जब भी मन किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में हो जाता है तो ये गीत हौसला बढ़ाते कि समझौता गमों से कर लो। हमारे एक और साथी कहने की आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, बहुत उदास हूं मैं मुझे गले लगा लो, जब भी ये दिल उदास होता है ये गीत इन्हें काफी पसंद है, जो सैड गीत कौन से पसंद है हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहने की कबीर सिंह फिल्म का गाना तुझे कितना चाहने लगे हम, जुबिन नौटियाल ने इसे गाया है, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, ये गीत इन्हें पसंद है। और हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट में से गीत शामिल हो गए हैं। एक और साथी का कहना है कि निराशावादी लोगों की जगह हंसमुख स्वभाव वाले लोगों के साथ समय गुजारना चाहिए। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि अच्छी संगति हो या खुश मिजाज लोगों के साथ अगर जब हम होते हैं तो हम भी खुश रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभी जो ये हम सोचते हैं कि निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये जो दिन भर ये उदास रहते हैं इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे वक्त में ही उस व्यक्ति को ये लगता है कि जब हम निराश हैं या हम उदास हैं तो लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं और उन्हें और ज्यादा निराश कर सकते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो दुख तकलीफ है उन्हें बांटने की कोशिश कर सकते हैं और उनके वो दोस्त बन सकते हैं जो जिसकी उन्हें तलाश है ना। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक ऐसा ही गीत, आपको ये बताना है कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया।

कभी कभी कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है, इस तरह से उन्होंने अपने पसंदीदा गीतों की एक लिस्ट भेजी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निराशा या नेगेटिविटी इंसान को जब आती है उसके मन को यह एहसास होता है कि अब मुझे हर कोशिश कार्य में असफलता मिल रही है, पर उसी इंसान को जब कोई आशा की किरण किसी विचार से या किसी व्यक्ति से मिलती है तो वह पुनः निराशा छोड़ कार्य करने लगता है। जीवन में आशा और निराशा आती रहती है। कुछ गीत जो इस विषय में है, मन रे तू काहे न धीर धरे, और भी बहुत से गीतों के बारे में इन्होंने लिख भेजा है। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। निराशा की राह छोड़ो, आशा का दीप जलाओ, हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी कहते हैं कि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ सकती है। तो हमारे एक और साथी का कहना है, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गीत उन्हें पसंद है। इस तरह से जब कोई चुप करवाने वाला हो या समझाने वाला हो तो भी निराशा बहुत जल्दी दूर हो जाती है, जैसे कि इस गीत में। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

दुखी होता था या कभी कभी उदास होता हूं तो शादी से पहले मेरी माताजी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, शादी के बाद और अभी तक मेरी धर्मपत्नी मेरे उत्साह और हिम्मत बढ़ाती है। और तो और मेरी दोनों बेटियां मेरी परेशानियों में कहती हैं कि पापा जी हमें बेटियां न समझकर अपने बेटे समझो, हमें परेशानी बताइए, हम हैं ना। तो भाई बेटियों को भी परेशानी बताई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि परेशानी सिर्फ बेटों को बताई जाए, लेकिन फिर भी ये उनका अपना एक तरीका है बात करने का। हमारे एक और साथी कह रहे सुख और दुख तो दुख छांव धूप छांव की तरह है जो जीवन में आते ही रहते हैं, जैसे हमारा एक पैर आगे चलता है और दूसरा पीछे। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि रात में रोक ली हो सूरज की रोशनी? तो हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए और इस मामले में गीत हमारा बहुत साथ देते हैं। और जब मैं टेंशन में होती हूं तो अपने पसंदीदा गीत सारे गीत गा लेती हूं और मेरी टेंशन 80% तक दूर हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा मित्र हो तो क्या कहना, और क्या हर सफर आसानी से कट जाता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि दुखी होना सिर्फ समय नष्ट करता है, कुछ हाथ तो आता नहीं, इसलिए लगता है कि दुखी होने से फायदा ही क्या है, जो है गुजर जाएगा, ये एक बात बहुत ज्यादा मन को सुकून देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन की जटिलता से जुड़ी चीजें आज की इबारत में शामिल है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी से गुजरते हुए आदमी का मन कभी कभार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ लोग तनाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिलीप की दुकांत फिल्मों की याद आ रही है, दिलीप कुमार की बात वो कह रहे हैं, उनकी फिल्म दिल दिया दर्द लिया का एक गाना कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये गीत भी आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें लेकिन ये बताइए कि वो कौन सा हैप्पी या कहें कि उम्मीदों भरा गीत है जो आपको दुख जब बहुत ज्यादा होता है और आप दुखी गाने सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और ज्यादा दुख में डूब जाते हैं, तो वो कौन सा एक उत्साहवर्धक गीत है जो आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको उस दुख से बाहर आने में मदद करता है। हो सकता है कोई दुखी गीत ही हो जो आपको आगे आने के लिए मदद करता हो और वापस उठ खड़े होने के लिए और एक आशा उम्मीद रखने के लिए मदद करता हो, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम बताइए।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राशिद अली की आवाज, अब्बास टायरवाला के बोल या रहमान का संगीत और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। तो कभी कभी अगर कोई हो ऐसा जो हमें बता दे कि भाई इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो उस दुख से ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल ये दुख भूल जाओ और कल से तुम्हें बिल्कुल हंसते रहना है। ऐसा कहना तो बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर दुख में डूबा है, निराशा में डूबा है, तो अचानक से उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ उसे धीरे धीरे उस चीज से बाहर ला सकता है। हमारे साथी कहने की वैसे तो मैं आशावादी ही हूँ, माता रानी की असीम कृपा है, जब भी कभी उदास या

नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया। और जाने तू या जाने ना फिल्म का जो गीत हमने सुनवाया था, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि भाई हम तो हैं सीनियर सिटीजन और हमें तो इस के बारे में पता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीज है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि मुकेश से अपनी दोस्ती शुरू से रही, अब तो पत्नी भी नहीं रही तो मुकेश के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। परिवर्तन नियति है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है। इसी तरह दुख का भी अंत होता है, सुख भी आता है, पतझड़ के बाद नई कोपलें भी आती हैं, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे साथी ने बताया कि वो देर से शामिल हुए तो तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, ऐसी तो मेरी तकदीर कहां, ये गीत उन्हें पसंद है। फिल्म जाने तू या जाने ना का गीत के बारे में हमारे साथियों ने बताया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कभी कभी पुराने गीतों को ही ज्यादा जानते हैं और नए गीत सिलेबस से बाहर के जब लग रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जिस तरह से सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं उसी तरह से पुराने जमाने और नए जमाने दोनों से अपडेट रखें। तो एक गीत फिर से आपके लिए नए जमाने का, ये बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

छिछोरे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और जिंदगी में किसी भी तरह की कोई फिक्र ना कीजिए, बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए। और सुरीला सफर कार्यक्रम से बस लेते हैं इजाजत।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है, लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने

0: के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: जीआरएफ की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग

0: चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जलभराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेन्द्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केन्द्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
1: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री

0: मुख्यमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे फारूक कैसर के बोल्ड। शिकारी फिल्म के इस गीत में आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आपको बता दें कि शाम 4 बजे आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकेंगे फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

जी एस कोहली का संगीतबद्ध ये गीत आपने सुना। नमस्ते जी फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया और अनजान के बोल थे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उजाला फिल्म से ये गीत। मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ। यारो सूरत हमारी नेमत जाओ, यहाँ भी दिल है

दार पे सब कुछ है कुर्बान। जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी के उन्हें

0: यहाँ भी दिल है यूँ हम से न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम से न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले दी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम।

दिल दे के देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में ये अगला गीत। छोटी बहन फिल्म के इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया।

छोटी बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुबीर सेन और लता मंगेशकर की आवाजें, हजरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और कार्यक्रम सदाबहार नक में आइए अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
0: और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

तो कार्यक्रम मनचाहे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गीत किसकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं ये तो बताएंगे ही, लेकिन वो गीत है मेरे हुजूर फिल्म से, ये आपको पहले बता रहे हैं। और इसकी फरमाइश आई है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, बद्री प्रसाद यादव, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी, आर के कानपुरी ने भी इस गीत की फरमाइश यहीं से भेजी है। और

सतरंगी भाटापारा से नोखिलाल वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा भी सुनना चाहते हैं मेरे हुजूर फिल्म से गीत। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत।

मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश पर जिनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं उनके नाम है न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय शीतल जो कि अपनी पत्नी के लिए ये गीत सुनना चाहते हैं। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू अजय कुमार साहू किशन साहू जय कुमार श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी माया साहू आप सभी की पसंद पर जहां आरा फिल्म से ये गीत सुनिए। आवाज तलत महमूद की राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत फिल्म लीडर से गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।
1: साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के।

0: बाप की रे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे, कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे,
1: अपने दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे।

0: समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, इस साला मैं तो साहब बन गया।
1: Attention!
0: साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।

0: सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली।
1: क्या गंगू तेली?
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया साला।

0: का देखो जैसे गोरा कोई लंदन का।
1: सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया, इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंह स्किंग फिल्म का ये गीत। मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है। चोरी चोरी ये गीत सुनना चाहते हैं। इतिहास फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
3: प्रिय महोदय, आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? डियर सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आप किस सिंहासन पर बैठाने वाले हैं? जनाब चंद्रा साहेब, हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
3: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
4: वो तो आना ही था।
3: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
4: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
3: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन। मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीशचंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
4: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
3: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
2: अच्छा, क्या साजिश हो रही है?
3: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों
4: जरूर होगी?
2: ओहो जनाब अख्तर साहब, ही 100 टाइम
4: आधा वर्ष मियाँ।
2: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
4: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातम पुरसी करने चला आया था।
2: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातम पुरसी होने लगे ना, तो ये देश मातम पुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी

0: जाए।
1: तो और करता भी क्या है?
2: देखो हरीश,
0: ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
3: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं, तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
2: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलोसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश कि इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय है।
1: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
2: जी हाँ, पर अकेले नहीं, बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
3: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूँ, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा?
1: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
2: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो, तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
3: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी
2: है?
3: यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
1: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
2: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
1: करेक्ट।
3: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो चलो बाहर चलो
2: चलो चलो।
0: रितु, क्या मंगवाए?
4: बस कॉफी।
0: बारा?
5: जी सर।
0: दो कोल्ड कॉफी।
4: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
0: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
4: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
0: जरूर मिलती है।
4: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
0: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली हैं।
4: अच्छा
0: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती हैं? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
4: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
0: क्योंकि मैं जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
4: तुम मजाक कर रहे हो।
0: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। चूंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
4: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है, ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
0: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
4: फिर वही बात।
0: रितु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
4: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
0: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
4: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
0: साल दो साल, ये सजा क्यों?
4: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
0: तब तक मैं क्या करूँ
5: सर? बिल।
4: तब तक बिल चुकाओ।

0: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
1: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
0: आसान होता तो तुम्हें ये नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
1: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
0: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
1: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है। गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
0: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
1: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूँ मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूँ। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे। अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
0: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूँ। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
1: जी।
0: मैं पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
1: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
0: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम मिलाओ।
1: वो क्या मेजर?
0: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंती लाल को वही तो दल में लाई थी।
1: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
0: यू आर राइट, एंड दैट मीन्स मनी।
1: ऑफ कोर्स।
0: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना, अलका से भी कह देना।
1: जी।
0: सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
1: आप फिक्र मत करें मेजर।
0: ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक्स।
2: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
3: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
2: अरे यही था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
3: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
2: हाँ, वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे। अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
3: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
2: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं
3: बेकरारी के हैं।
2: मैं समझा नहीं। बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
3: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हमें कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
2: वो कैसे?
3: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा। रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
2: अच्छा,
3: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
2: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
3: यही तो समझ में नहीं आता। जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रुकने को कहती है।
2: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब न कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती।
3: छोड़ो इस बात को।
2: पर हरीश तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
3: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता?
2: लेकिन वही रीता आप तुमसे इंतजार करने को कह रही है। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
3: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो। उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
2: ये कारण अख्तर तो नहीं?
3: अख्तर?
2: हाँ, नहीं। उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता
3: हूँ। वो नहीं हो सकता, रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
2: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी। नारी इतनी सरल नहीं होती।
3: पुरुष ही कहाँ इतना साफ होता है। स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूँ जो

0: अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं। मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
1: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
0: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
1: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
0: अच्छा चलो।
2: नहीं सचिन।
0: हेलो हेलो।
2: किस बात में खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
3: हाउ डू यू डू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब तक आपसे आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
2: कॉफी? श्योर श्योर। क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है?
1: भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके बाय
3: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
0: मैं
2: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
3: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
0: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
2: दैट्स गुड।
3: बैठे ना डॉक्टर चंद्र।
2: बैठे। बेरा बेरा।
4: जी साहब।
2: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
3: जी नहीं।
2: तुम कुछ लोगे हरीश?
0: मैं कुछ नहीं लूंगा।
2: ओके बस तीन गरम कॉफी लाओ बेरा।
4: अभी लाया सर।
2: हरीश, अलका बढ़िया कहानियां लिखती है, गाना नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
0: दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन।
3: अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
2: भाई ऐसी बात नहीं है।
4: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
2: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
0: क्या हुआ?
2: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
0: चलो चलो हम भी चलते हैं।
2: नहीं, कोई खास बात नहीं है, उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
3: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
0: मैं छोड़ाऊंगा।
2: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
0: कोई बात नहीं।
2: ओके
5: रितु, हरीश आखिर गायब कहाँ हो गया?
3: क्यों, क्या हुआ पापा?
5: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं, थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
3: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
5: हाँ साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
3: लड़की खराब होगी, पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
5: हरीश कितना बहक सकता है ये उस शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
3: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
5: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था, तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा। और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका, वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
3: पापा आपको आज क्या हो गया है, अभिनय नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
5: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन DSP मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है, कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं हरीश का उसके साथ क्या काम?
6: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी पगली कहीं की।
3: मैं रोका रही हूं।
6: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं, अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
3: पापा मैं आपको दोष नहीं देती।
6: दोष मेरा है, मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी

0: से पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये फूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
1: पापा पापा, हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा। अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं, जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती। उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था। हरीश उनका प्रिय छात्र था।
0: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
1: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
0: हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कहाँ तक कुंडों के गिरोह से बच सकता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने कड़वाहट पैदा कर रखी। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौरतलब है कि इंकलाब खुशियां तो खाने से ज्यादा नई खुशियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों के साथ ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाए।
3: देखो तुम हमेशा रिएक्शनरी
0: लगता है, जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता।

0: इस जहन्नुम में ले आए हो।
1: इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत है। उम्रे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
2: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
1: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
2: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
0: हरीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले एक्शन में तुम्हारा ये हाल है।
2: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं,

0: तो वैसे मुझ पूछते रहूं।
1: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी। नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
2: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
1: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश तुम पाखंडी हो।
2: शट अप,
1: जबान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर उगलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
2: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
1: हरीश,
3: अब तक ये सब क्या है?
1: हरीश गद्दार है मेजर।
3: क्यों हरीश, क्या बात है?
2: मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है। मैं इसे गलत समझता हूँ।
3: तुम्हें ये समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
2: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
1: ये बकता है मेजर।
3: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
2: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है, ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए और शराब के लिए।
1: हरीश, आप लोग सफेद पोश डाकू हैं। डाकू हैं आप लोग।
3: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं? अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
1: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
3: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे।
1: मेजर,
3: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की।
1: मेजर,
3: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
2: अख्तर, तुम जलील हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
1: हाँ, मैं जलील हूँ, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते।

0: ओहो, कौन है इतनी रात गए?
1: अरे हरीश, तुम क्या हुआ? खून? अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। चल रिक्शा।

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आ सको तो जल्दी चलिए। अच्छा
0: अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती।

0: मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
1: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action!
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मन्ना किनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोतागणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं बताइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ, वापस आपने याद ताजा कर दी मेरी
2: जी।
3: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
2: बिल्कुल,
3: और इस बार किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
2: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
3: थैंक यू जी।
2: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
3: धन्यवाद जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
2: जी।
3: और विविध भारतीय आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी,
2: जी
3: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक, डफ, मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था
2: जी। जी
3: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से
2: जी।
3: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल, कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कस्तूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन आए
2: जी।
3: 2006 में मेरा पोता सोहिल सेन जी आए, और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
2: जी।
3: तो ये पांच पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में
2: जी। बिल्कुल सही कहा आपने,
3: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज चार पीढ़ियां नहीं, पांचवी पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है
2: जी, जी।
3: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है
2: जी,
3: जो जमाल सेन जी से लेके समर तक
2: जी।
3: मैं सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है, वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा, जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
2: बिल्कुल,
3: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर है, फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी जो भी डांस मास्टर सिंगर एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तान सेन जी वो सितार वगैरह बजाते थे, फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन वो सितार, मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे, छठा मैं

0: छठी मतलब छठा मैं
1: जी
0: था दिलीप सेन, तो करते करते निकला। और एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन
1: जी
0: गए।
1: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
0: जी,
1: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग 4 या 6 पीढ़ियों से, अब तो
0: अभी
1: कहेंगे
0: छठी हो
1: छठी
0: जाएगी।
1: पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए, कहां
0: जी,
1: से हुए?
0: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की कलकत्ता रेडियो से। वहां पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहां
1: अच्छा
0: शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
1: मतलब टैगोर साहब, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर
0: रविंद्रनाथ
1: साहब।
0: टैगोर जी के यहां शांति निकेतन में कुछ
1: अच्छा
0: साल रहे, और वहां अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहां कुछ साल। बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर। वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था, जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में। क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे,
1: जी
0: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछे होती थी, और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का,
1: जी जी
0: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था।
1: हाँ
0: तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहां से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी।
1: खेमचंद प्रकाश
0: वो भी
1: जी
0: हमारे ही गांव से थे, सुजानगढ़ से,
1: जी
0: और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी।
1: बिल्कुल
0: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये राजस्थान
1: बिल्कुल।
0: की।
1: और वही आपके सुजानगढ़ के पास, चूरू से थोड़ा पास, बीकानेर शहर से जो है पंडित
0: हाँ,
1: भरत व्यास,
0: भरत व्यास जी है,
1: गुलाम
0: गुलाम गुलाम मोहम्मद जी हैं,
1: मोहम्मद साहब।
0: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे
1: हाँ
0: कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही
1: संगीत
0: है।
1: है जी।
0: और जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल सुनिए।

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी।
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत। और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना, तो मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा, मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने और उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं। तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है। तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, तक दिना के दिने दिन दिन ना दिने तक, अब ये दिन तक दिना दिन एक गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टन, ऐसे भी कर सकते थे, मगर तक दिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लाइंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर अर अर अर और, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये कई गाने की शक्ल में होता है। ये हमारे दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, वसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ। क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एच डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी, जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
0: जी,
1: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पर संगीत बदलता है, वो अपना चोला चेंज करता है, मगर

0: मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
1: वो वही
0: जो हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को। तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी,
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति
0: आई, और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है, और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से फिल्म
0: मिली? फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा चलता था।
1: हाँ।
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो, बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे।
1: हाँ।
0: या कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था तो जहन में, एक जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी,
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते तीन चार साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीजें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला, तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, उस बैंक में मैंने 5 रुपया का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी, जब आप चेक लेने जाएंगे या पैसे दो के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल,
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था, तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये प्रकाशन में नंबर 1 है इंडिया के, एक माने हुए प्रकाशन हैं, जो कि रिदम में, मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक, तबला, कोंगो, बोंगो, तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो
1: जी।
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं, जो
0: क्योंकि जो उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? मैं बोला यार अपन संगीतकार बन जाएं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: अस्सी के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूं, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150-200-300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल जाता था। बोला ये खामों का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहां, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मरतबा उनके यहां लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहां रहता हूं, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे।
1: अच्छा, गीतकार।
0: गीतकार असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो
1: जी।
0: तो मैं असद वो वालिद साहब को बोला मैं चाचा कौन मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम पर दो दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा, मुझे बताया नहीं कहां ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, मेरी यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे। बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। बोला जाके आने में क्या बुराई है। बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा।

0: तो हम लोग 10-11 बजे गए तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला, यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें। बोले यही बच्चे, बोले ये बच्चे सुनाएंगे। ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे डॉक्टर, वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे। तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूं, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया हमको, एक छोटा सा लिफाफा दिया। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैंने बोला भाई पिक्चर मिल गई। तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़ी की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी,
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं,
1: मगर
0: कंपोजिशन बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुरा ना माने तो सुनाना चाहूंगा,
1: बिल्कुल।
0: हमने ये दिल्ली के सारे गाने कंपोज कर लिए थे।
1: हाँ।
0: तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते, बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, बोले यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोले ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोले ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कु आई लव यू तू ना धुन तू धुन तू ना धुन तुम,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे, और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे, क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या,
1: क्या है,
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है, ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए, ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं अपना ही आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा,
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका, ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन ले
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे
0: जी।
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये

0: डरा डरा साहब बोल, डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है। तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सम में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं, ये 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे, मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
1: अच्छा,
0: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता है। तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है ये, 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा।
1: हाँ।
0: तो इस तरीके से वो रहा। तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
1: कि एक नई बात है,
0: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है। और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
1: जी,
0: आईना और ये दिल लगे में।
1: जी तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर मिला यश चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल्लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
0: मौका मिला
1: बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
0: बहुत बड़ी नहीं, ड्रीम था, सपना था।
1: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी जो उम्मीद भी नहीं होती, तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
0: देखिए दीदी के साथ तो पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
1: अच्छा।
0: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
1: अच्छा।
0: फिर ऊपर करके कसा बरा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी।
1: जी।
0: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक भिनाग दिन दिन तिन्ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया
1: जी।
0: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त स्ट्राइक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
1: अच्छा।
0: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में जहां पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया। फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा ठीक हो गया। बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई, क्या जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा। मैं बोला नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रहेगी। बोले कैसे, बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद उड़ा के ले जा तक दिन आगे दिन, बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था। मैं बोला सजना वे मेरे नींद उड़ा के ले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा तक। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना। मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
1: नम्रता
0: के अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का लोंडा हूँ, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ।
1: लेकिन एक
0: मगर उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो, मैं गाऊंगी। तो गाया और वो गाना कमाल हुआ,
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल लगी तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम हो सजे नाम।
1: बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे मैंने जाते दीदी के पैर

छुए माफी आफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी, बोला नहीं नहीं ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था। लगी

0: ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। सुना उन्होंने बोला इस तरीके से, तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से, बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों तूने धुन नहीं बनाई? बोला नहीं आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं। तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यार कमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार कमारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है नया स्टाइल है गाती हूँ, ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट हो रहा था। मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं। बोला क्यों तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है ये मेरे दिल के करीब है
1: जी।
0: बोला अच्छा। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ जब कोई गाना है, उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूं तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था, होठों पे बस।

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: 2 मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी 3 घंटे। बोले नहीं, ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया,
1: क्या बात।
0: गाना हो गया। उसके बाद में तब तक खाना आ गया था, तो यश जी भी आ गए थे। तो
1: जी
0: यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चालू कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही
1: गाने,
0: समय में 4 गाने गाए हूं।
1: क्या
0: ये मेरे
1: बात,
0: लिए बहुत
1: ये
0: नसीब
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही।
1: जी।
0: और मैं समझ रहा हूं शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए।
1: जी

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसा ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती थी, क्यों उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है।
1: अच्छा।
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या

0: हीरोइन।
1: बिल्कुल
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में। तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे,
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है एक कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता हूँ,
1: गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से।
0: नहीं, डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूं आपको, जैसे हरिहरन जी, चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं।
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की,
1: चित्रा के एस,
0: हम चित्रा जी बोलते हैं उनको। उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: तुमसे
1: क्या बात है, बहुत
0: तो ये गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी जी
0: जब सैम दोनों सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुलू पचीजिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी। तो उसका एक गाना था

0: दिल।
1: बहुत गहरा गाना
0: अब
1: था
0: ये गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते
1: जी,
0: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है
1: उसको भी रखना है,
0: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, 1/2 घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं मैं एक मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ नहीं, नहीं मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है
1: जी,
0: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में मैं बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाजे से ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप लोग, हाँ हाँ सर कर सकते हैं, मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाऊं तुझे मैं छुपा लूं, ओ हो तो ये मुर्गी रिमेन ये भी आ सकती है शायद, हाँ आ सकती है सर, तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुबराते हैं
1: साइकोलॉजिकल,
0: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको फिर अटक गए तो अटक गए, तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और काबिल हैं।
1: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का
0: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है
1: जी।
0: ये

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का नया चैनल है। शाम के 5 बजे है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

थोड़ी देर में 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 5:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज पर्सन बिहाइंड द स्टोरी प्रोग्राम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे। शाम 5:40 पर रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:30 पर। उसके बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और राजस्थान में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे। 7:00 आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम की सांगवाणी। इसके अंतर्गत ग्रामीण श्रोता सुनेंगे चर्चा बातचीत लोक भजन और बाजार भाव। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या आप सुन सकते हैं 8:45 पर। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये रहे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण और अब एक नजर हमारे कल के मुख्य

कल सुबह 6 बज कर 5 मिनट पर आप सुनेंगे चिंतन आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। यहीं से 6 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे वंदना रामचरित मानस का आप सुन सकते हैं 6 बजकर 30 मिनट पर। खेती में बात का समय रहेगा 6 बजकर 45 मिनट पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 6 बजकर 50 मिनट पर। वातायन का समय रहेगा 7 बजकर 20 मिनट पर। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे 7 बजकर 30 मिनट पर। सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर और दोपहर में हमारे मुंबई केंद्र से। समाचार प्रभात सुनवाए जाएंगे सुबह 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे स्टूडियो से सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे कुछ दिल से प्रोग्राम। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 8 बजकर 45 मिनट पर। 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सुगम संगीत हमारे स्टूडियो से आप सुन सकते हैं सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर। कस्टमाइज प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर। 11 बजे आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

शाम 5:05 पर बच्चों के मुख से कार्यक्रम आप सुनेंगे। इसके अंतर्गत आप सुन सकते हैं जानकारी की बात, चर्चा और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे सुबह क्षमा कीजिएगा शाम 5:30 पर और रात 9 हमारे मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे कल शाम 6:30 से हमारे जयपुर केंद्र से। 7 आप सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, बातचीत, लोक भजन और बाजार भाव। 8:45 पर समाचार संध्या आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर। रात 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 11 आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये तो था कार्यक्रम विवरण। FM बैंड 101.3 MHz पर आकाशवाणी 500 में ही चैनल है। 5:05 में ही लीजिए सुनिए सीमा मिश्रा की आवाज में ये राजस्थानी गीत।

0: अभी आपने सीमा मिश्रा सौथी की आवाज में राजस्थानी लोकगीत सुना। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी पांचवड़े का मानी चैनल है। 5:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज
1: आनंद श्रीवास्तव। नमस्कार, एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
1: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
2: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहां पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहां पर आर्मी का एक सेंटर है, उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे CDA में, उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था, उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के गया, नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो उस रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दिए। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यू टर्न था, और उस पहले यू टर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते, जहां हो जैसे हो वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यू टर्न था, इसे मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर, तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन रहना, तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जब वापस लाके छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बनकर जीना है।
1: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
2: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो, पहले NDA में फेल हुए हैं, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, NDA में 3 बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन

0: सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में सीडीएस की तैयारी कर सकूं, जाना तो अल्टीमेट फौज में है। फिर सीडीएस में फेल हुए दो तीन बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम पांच से फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो अपने ड्रीम को पाते हो तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाय फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला, क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में।
0: देखिए, हम जो इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे थे, चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स कोर्स फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ दो महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे तो वहां पे समाचार पत्र भी जो तीन चार दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था तीन चार दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उससे अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही, 24 साल की मेरी उम्र थी, युद्ध शुरू हो चुका था तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सबके सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थी और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़ी आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सके कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको, उस क्षेत्र में आगे उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पर उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं एक खूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते, उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिग्नल हो, लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे

0: थे। 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबसी आपके साथ बातचीत में आएगा। उसकी सुबह कैसी हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
1: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी।

0: थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी। लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को। मेरे उठने में बैठने की नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई। दिन के पाव फटने से पहले गोला फट चुका था और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले की कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर, 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रस्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार में घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है, जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी, अगर सारी उम्र तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका अफसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया, रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे RMO, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उससे मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डिक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाने से गोला गया, लेकिन भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वाला मुझे नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजेंद्र सिंह जो डॉक्टर थे, वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो MH में या MH अखनूर में उस समय

0: उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरव्यू किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहां से वो कैसे बचा के ले आए वापिस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 सर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद है उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी हुई। तो बच तो गया था, वो कर्नल रजिंदर सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं, परेशान करते होंगे आज भी।
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं, उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पर तंकरना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसी जगह है, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने की बजाय उस दर्द पर हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक के बाद में ब्रिगेडियर अशोक आर्टिफिशियल इंफेंट्री के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं एक बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी मैं उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉइस विचार था, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरी तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूं डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी

0: प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं। मेजर साहब, जब आप एक साल से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन एक साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे पांच जने थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बनके कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम है। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं या फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ, तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा गए। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं चार कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गए। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और पीटीएसडी के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माय केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद किसके मिनट भाग गया है। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो
1: जी।
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, एनजीओ है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3500 एम्पुटीज कनेक्टेड है
1: जी,
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज में जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उन्होंने बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खासकर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी
1: जी,
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी है, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो

0: छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
1: तीन बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिए गए, और वहां से मेरे को ब्लेड ऑफ का नाम, फर्स्ट ब्लेड ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे तो 2018 को सेना ने ईयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था, और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जांपल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ दिस सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई मोड पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे एक महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
0: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
1: देखिये, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल रहा है, उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
0: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं, और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद, जय हिंद, सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: अभी आप पोस्टकास्ट सीरीज पर्सन बिहाइंड द स्टोरी प्रोग्राम सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 MHz पर आकाशवाणी 500 का नया चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है महासतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे वो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगें मान ली गई।

0: है, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजीपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जारी है प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की बैठक हुई। इसके बाद सीजेपी की ओर से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई और प्रदर्शनकारियों से तत्काल प्रभाव से वापस लौटने का आग्रह किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास तथा आशुतोष राका से लंबी बातचीत की। इसके बाद हुई प्रेस वार्ता में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है।
1: हम लोगों ने 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर इन ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो देयर वी वुड लाइक टू ऑल्सो विथड्रॉ।
0: श्री नड्डा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नीट पेपर लीक मामले के प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है, उन्हें नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधारों पर मंथन होगा।
2: कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, तो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन दुखी था। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और वे युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं उठा सकें। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए नए कानून पर मोहर लगाई है, जिसमें दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए 3 महीने में सजा सुनाने का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम छात्रों के हित में है और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। सहकारिता के मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी की आज से जयपुर में शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने HCM रीपा से इस सेवा को शुरू किया। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त भी मौजूद रहे। भारत टैक्सी आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के लिए लाभदायी परिवहन व्यवस्था की दिशा में अहम पहल है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, साथ ही ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने आज जयपुर में चरक भवन में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी मुलाकात की। लोकभवन में हुई इस भेंट में दोनों ने देश और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अंग प्रत्यारोपण सहित कई महंगे इलाज मुफ्त मिल रहे हैं। मां योजना में अब तक 2600 से ज्यादा मरीजों को राजस्थान और अन्य राज्यों में

अंग प्रत्यारोपण तथा दूसरे इलाज का लाभ मिला है। इन उपचार पर अब तक 120 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। योजना के तहत जयपुर में 1200 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। इसके अलावा कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किए गए। योजना में 107 मरीजों ने राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज करवाया। गौरतलब है कि अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपचार पूरी तरह कैशलेस है और मरीज को इलाज के लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ती।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी देश भर के 400 से अधिक युवा प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक दो चरणों में हुआ था। प्रतिभागियों का चयन एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। इसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 27वां करगिल विजय दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन ऑपरेशन विजय के अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पावन अवसर है, जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों से मुकाबला कर देश की संप्रभुता की रक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल संघर्ष की शुरुआत मई 1999 में हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर करगिल, द्रास और काकसर क्षेत्रों की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाली दुर्गम चोटियों, बर्फीली ठंड, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच जीत हासिल की। करगिल विजय दिवस पर समूचा राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा करने वाले अमर वीरों को नमन करता है। इस मौके पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आज 2 दिन के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्य करगिल विजय दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई के बीच 5 जिलों में अत्यधिक, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच सरहदी जिले जैसलमेर में आज सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। बाड़मेर जिले के चौहटन, बीजासर, नवातला और अन्य क्षेत्रों में बरसात से कई जगह पानी भर गया और कच्चे मकान ढह गए। वहीं कल श्रीगंगानगर और सिरोही जिले में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। आबूराज में 20 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पाली, जालौर और सिरोही जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कल उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि ज्यादातर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आम जन को जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा

0: अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने तथा जल भराव रोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. प्रदीप असवाल ने मौसमी बीमारियों में बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने की अपील की है।
1: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए। मानसून का आनंद लें बहुत जरूरी है लेकिन वो आनंद लगातार रहे इसके लिए सजग रहें, चिकित्सा कर्मियों की बात सुनें और समय रहते चिकित्सक को दिखाएं, विलंब नहीं करें।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर के जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यहां शूटिंग एकेडमी शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। श्री राठौड़ आज जगतपुरा शूटिंग रेंज में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में बोल रहे थे। उन्होंने प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में विजयी रहे निशानेबाजों को पदक प्रदान किए। 23 जुलाई से शुरू हुए और 29 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अविनाश मल्होत्रा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त हस्तांतरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम मिनी सचिवालय में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से योजना की 23वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम में जिले के 1,45,114 लाभार्थी किसानों को 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, जवान, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। अलवर शहर में सिंचाई विभाग द्वारा 3,34,00,000 रुपए की लागत से बने भाखेड़ा एनिकट का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस एनिकट को जनता को समर्पित किया। इस एनिकट से जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि होगी और शहरवासियों के लिए एक नया पर्यटन स्थल मिलेगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नटनी का 12 से जैसमन झील तक करीब 36 करोड़ रुपए की राशि से नहर पक्कीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। नहर पक्कीकरण के कार्य से जैसमन झील तक अधिक पानी पहुंचेगा तथा भूजल स्तर में वृद्धि होगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। अलवर में नीट यूजी परीक्षा 2026 का आयोजन जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। जिले में कुल 9,731 अभ्यर्थियों में से 8,945 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अलवर जिले में 3,089 वरिष्ठ नागरिकों ने निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किए। अलवर के कलेक्ट्रेट सभागार में इसके लिए लॉटरी निकाली गई, जिनमें 1600 यात्रियों को निशुल्क यात्रा के लिए चयन किया गया। 181 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा के तहत तथा 1489 यात्री रेलगाड़ी के जरिए तीर्थ यात्रा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का 28 जून को जिला मुख्यालय पर आयोजन हुआ, जिसमें 14,770

अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा जिला मुख्यालय पर 53 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 2,75,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो मुक्त भारत का संदेश दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर अलवर में एनटीसीए द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में टाइगर री इंट्रोडक्शन, अवसर और चुनौती विषयों

0: जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत, पाछे नौजवान रो आंदोलन खत्म, प्रदर्शन करण वालों तुरंत पाछा जावण री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दिनो, कहो नौजवान रा हित माय फैसलो लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित किया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल होने वाला सागई बातचीत करेला। और प्रदेश में ई चौमासा में हाल ताई कम में बरसियो, 20 जिला में सामान्य और 15 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में नौजवाना कानून चलाई चियो आंदोलन खत्म फेवन रो ऐलान करती चियो है। नई दिल्ली में आज खबर नवीसन सागे बातचीत रे दौरान कॉकरोच जनता पार्टी रा प्रवक्ता आशुतोष राका कहो कि सरकार वारी मांगा मान लेनी है।
1: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर इन ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो देयर वी वुड लाइक टू ऑल्सो विथड्रॉ।
0: इन पहले केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली में तीजा दौर री मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीजेपी रा प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका सागे लंबी बातचीत कीनी। इन पाछे सीजेपी आंदोलन खत्म करण रो ऐलान करता था का प्रदर्शन करण वाला पाछा लौट जावन री अरज कीनी। श्री नड्डा खबर नवीसा ने बतायो कि नीट पेपर लीक मामला में प्रदर्शन करण वाला रे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जावेला। वह कहो कि नीट पेपर लीक रा पीड़ित परिवारों रा प्रति सरकार री पूरी सहानुभूति है, अरवाना नियमा रे मुताबिक मुआवजो दियो जावेला। नड्डा कहो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधारा रा बारा में विचार करियो जावेला।
2: कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, तो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए, जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दे दिनो है। वह सोशल मीडिया पोस्ट जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफो सौंपन की जानकारी दी। वारा इस्तीफा में श्री प्रधान मांडियो कि वारी परीक्षा माफिया रे कारण कई विद्यार्थी री जिंदगी खराब नहीं वेवन देवन री कोशिश रही। श्री प्रधान मांडियो का लाड़ला दस दिन में देश में विद्यार्थियों का न्यू रीट परीक्षा पेपर लीक रा मामला में कराया जा रहा प्रदर्शन वह दुखी है। वे मंडियो का नौजवान भारत रो भविष्य भिवन सागे न्यूयो और विकसित भारत बनावन वाला है, जो देश रे असली ताकत है। श्री प्रधान आगे मंडियो का जंतर मंतर सामी और आखा देश माए लाडला दिना उपजा हालात विद्यार्थियों रो भविष्य कानूनी दाव पेच माए उलझन बचावन और वारो भगत पढ़ाई माए लगार करियर बनावन माए कामयाबी हासिल करन री मंशा सागे वह प्रधानमंत्री ने इस्तीफो भेज दिनो है। वह कहो कि नौजवान देश सब मोटी ताकत है और वह इनने भ्रम रा कुचक्र माए नी फंसवा देवेला। श्री प्रधान कहो कि वह इस्तीफा ई कारण दिनो ताकि जंतर मंतर सामी और देश माए जो हालात बनिया वानो फायदो देश विरोधी ताकता नी उठा सके। इबीच केंद्र सरकार पेपर लीक रा मामला रोकण सारू नुवो कानून बनाउन तय कीनो है, जिन्हें तहत दोषियां ने फास्ट ट्रैक अदालत रे जरिए 3 महीना में सजा सुनावन रो प्रावधान है। इन तहत दोषियां ने 10 साल ताई री कैद और 10 करोड़ रुपए ताई रा जुर्माना री सजा दी जा सकेला।

0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहकारिता रा आधार ऊ चलाई जावण वाली भारत टैक्सी री आज जयपुर में राखी जा कार्यक्रम में शुरुआत की। ई मौके केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश रा सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ई मौजूद हा। भारत टैक्सी जनता सारू आवण जावण री साफ कोई सागे फायदेमंद व्यवस्था री पहल है। इनरो मकसद मुसाफिरा ने आवण जावण री हिफाजत सागे किफायती भरोसेमंद और आसान सुविधा मुहैया करावण सागे गाड़ी चलावण वाला ने माली तौर मजबूत बनावनो है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना रा तहत गंभीर बीमारियां रा मरीजा ने उपतु अंग लगावण समेत कई महंगा इलाज मुफ्त मिल रहा है। मां योजना रा तहत हाल ताई 2672 मरीजा ने राजस्थान और दूजा राज्य में अंग प्रत्यारोपण और दूजा इलाज रो फायदो मिलियो है। इमाते हाल ताई 120 करोड़ रुपए बत्तो खर्चो करी चियो है। योजना रा तहत जयपुर में 1232 दूजी किडनी लगाई ची। इस आगे कान में कॉकलियर इम्प्लांट खून रो बोन मेरो ट्रांसप्लांट और हृदय और फेफड़ाई दूजा लगाई चिया। योजना रा तहत 107 मरीजा ने प्रदेश बाहर दूजा राज्य अस्पताल में इलाज मुफ्त मिलियो। ध्यान जोग है कि उपतु अंग लगावन रा इलाज में नकद रकम री जरूरत नहीं वह है और मरीज ने इलाज सारू कोई खर्चो नहीं करनो पड़े है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ये कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनल AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। इस आगे AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे ही वो कार्यक्रम प्रसारित करियो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल सिंजा विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 में शामिल होने वाला 432 लोगों सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने रो कार्यक्रम है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लाला महीना री 4-30 तारीख बीच है दो दौर में रखी चियो हो। इनमें सवाल जवाब री ऑनलाइन होल के जरिए 300,000 नौजवान शामिल किया हा। 27वां कारगिल विजय दिवस काल मनायो जावेला। वो दिन 1999 में भया करगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय रा अमर वीरा ने श्रद्धांजलि देवन सारू मनायो जावे है। करगिल युद्ध में भारत रा रणबांकुरा पाकिस्तान रा फौजियां और घुसपैठियां ऊ मुकाबलो कर और देश री संप्रभुता री हिफाजत कीनी ही। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान बीच करगिल री लड़ाई मई 1999 में हुई जब पाकिस्तानी फौजी और घुसपैठिया नियंत्रण रेखा पार कर करगिल द्रास और काक्सर हल्का री चोटिया माथे कब्जो कर लीनो। भारत री फौज जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता था का 16-18,000 फीट री ऊंचाई वाली मुश्किल चोटियां बर्फीला तूफान और ठंड ऑक्सीजन री कमी और दुश्मन री लगातार गोलाबारी पीछे जीत हासिल कीनी। कारगिल विजय दिवस रे मौके पूरो देश मायड़ भूमि री हिफाजत करण सारू जान री बाजी लगा देवन वाला अमर वीरा ने नमन करे है। ई मौके द्रासरा कारगिल युद्ध स्मारक माथे आज दो दिन रा खास कार्यक्रम शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समर स्मारक माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि देर कारगिल विजय दिवस रा खास जलसरी अगुवाई करेला। सलेह गाजी आकाशवाणी समाचार जयपुर।
0: अरब मौसम प्रदेश में ईद चौमासा के दौरान हालताएं केवल फलौदी जिला में आई असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर मिली जानकारी के मुजब 1 जून को आज ताई 5 जिला में घनी 20 जिला में सामान्य और 15 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो। इन बीच सरहदी जिला जैसलमेर में आज सवेरे हुई रुक रुक कर छाटो छिड़को फैल रही है। बाड़मेर जिला रा चौहटन बीजासर नवातला और दूजा हल्का में हुई बरसात कई ठोड़ा पानी भर गयो और कच्चा मकान ढस गया। काल श्रीगंगानगर और सिरोही जिला में खटे खटे घनी जोरदार बारिश हुई। आबूराज में 20 सेंटीमीटर पानी पर्चियो। बरसात री ऋतु में डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया समेत नरी नरी मौसमी बीमारियों बचाव

0: लेकर जनता मंच आग चकाई जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओरू एंटी लार्वा अभियान चलायो जा रियो है। विभाग रा अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप असवाल आकाशवाणी समाचार सागर खास बातचीत रे दौरान बुखार या दूजा लक्षण नजर आवन री सूरत में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र मथ जांच करावन री अरज कीनी।
1: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत, पाछे नौजवान रो आंदोलन खत्म, प्रदर्शन करने वालों तुरंत पाछा जावन री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दिनो, कहो नौजवान हित में फैसलो लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। और प्रदेश माए ही चौमासा माए हाल ताई कम में बरसियो, 20 जिला माए सामान्य और 15 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का मेन चैनल है। शाम के 7 बजे है प्रसिद्ध ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाणी कार्यक्रम हमारा वारा हान रे किसान भाई ने ये किसान बने ने सोराड़ी विनय बेनो राम राम राम राम। देखो किसान भाई अब रोजी किसान भाई नो कार्यक्रम है किसान भाई सोरा माते भी पन्नरता थके बे सोरा माते अलिया थका है किमने किसान भाई कितलो पानी किमने पड़ी रो हो या कितलो गर्मी किमने पड़ी रही हो या कितली टाट किमने पड़ी रही हो पर आप किसान भाई नो कार्यक्रम है तो अपने सोरा माते टीम काले ने आबूस पड़े किसान भाई पानी पड़ी रो थको है मैं किसान भाई अलिया थका है पर किसान भाई मारा हमें जो रहा थका है आज तो विनय बहन ही थके हैं हूँ बात करवाने है तो किन्नी भाई हूँ बात करवाने है एक वक्त पूरी जानकारी आल दे विवरा बन के आज हूँ बात कर किसान भाई आज आप बात करूंगा जी दलहनी तिलहनी फसल है इन्हें मैं जल निकासी के बारे में बात करूंगा बीजी बात करूंगा बारिश ने मौसम में जो नवजात बछड़ा बछड़ी है इन्हें देखभाल के बारे में बात करूंगा बीजी मक्का की फसल में उर्वरक यूरिया खाद का उपयोग करे इन बारे में बात करूंगा इन्हें हाथी किसान मनोहर भाई पटेल अपने बात है कि सोयाबीन में दवाई में छिड़काव करते समय सावधानियां में हर तरह छिड़काव करें इन बारे में बात करूंगा किसान भाई इन्हें हाथी जो भी संदेश वगैरह है गीत है ये मांगा आदेश पूर्व विवरण जानकारी के अपने इन्हें बारे में बात करें किसान भाई अभी अपने बात करे काम नहीं क्योंकि पानी कारण तो अपने इंतजार कर रहे थे कहते हैं कि पानी कई वक्त अब नहीं हूँ खबर भाई कहीं पानी आवे को नहीं आवे इंतजार कर रहे थे कहते देखो भाई इंतजार करते करते करते मन निराश थी रुक तू किसान भाई ने पर पासो खुशी ने रूप में बदलाई गयू देखो अपने पासला बारे भी बात की थी एक भाई पानी पड़ो कई वक्त आवे पड़ी जाए कई वक्त वार पड़ी जाए ये भाई मेघ बाबा ने तक नहीं है इस जी कई वक्त करवू है ये साथ में अपने हाथ में तो कई हेस नहीं એટલે હર ભાઈ નિરાશ મન તો ખરી ભી નહીં કરવું દેખો આ બે તીન રાશિ લગાતાર પાણી પડી રહ્યું થકું હે જેમાં જેમ જેમાં જેમ કઈ વખત વધારે પડી જાય કઈ વખત કમ પડી રહ્યું હે પણ પાણી ભાઈ ચાલુ ઓછું થઈ ગયું હે કિસાન ભાઈ ફસલ ભી આપણે અચ્છી જે ભી સોયાબીન વગેરા હે મક્કા હે જે ભી દલહની ફસલ હે એ ભી રોયાદ અચ્છી પનપી ગઈ હે મેં મક્કાની ફસલ મેં તો જે ભી ખાતર વગેરે અલવાનો ડિટેલ

0: सुटू काम कर रहा कहीं फिर काम करिए
1: बाकी
0: खेतर ना काम खेतर करो
1: अच्छा तो बे वीघा जमीन में तुम्हारे कटलू सोयाबीन मिली जाए तुमने
0: अगर बढ़िया भागे तो पांच बोरी भागी जाए बाजू तो बे बोरी भी भागी
1: अभी सोयाबीन तुम करो एने बाद पास हियरा में हूँ करो
0: हियरा में गाँव करो
1: अच्छा पूरा में गाँव करो अच्छा मक्का वगैरह नहीं करो
0: मक्का वगैरह तो अगर आड़स पड़ोस सब करेंगे एम करो पड़ेगा
1: अच्छा बीजो डूंगर भाई इन्हें हाथे का एक सुटकर काम करवा जाओ तो वहाँ तो मन हरते हूँ पेमेंट डाले ₹250 अच्छा आज गवर्नमेंट वगैरह जी भी योजना वगैरह न करे इन का सहायता मिली है
0: इनमें तो मेरे जॉब कार्ड वालों आवेगी इनमें तो अभी अब तो भरा अभी अब थाना पीछा अभी नहीं फिर नहीं अब अगर तो मिलेगा काम तो पास छुट्टी रहे बस
1: अच्छा रोजगार गारंटी
0: रोजगार गारंटी
1: तो तमें बेहनो नाम है या बस तमारे अकेले
0: नाम बेहनो नाम
1: है जो कार्ड तमारे बेहन ही होगा सोरन अलग नहीं थी
0: ना सोरन अलग नहीं थी
1: आज भी सरकार तरफ से की जी भी योजनाएं न करे ये अपने जी नजदीकी बैंक हो या बस रोजगार जी भी कार्यालय बने थका हो वहाँ जाए ना अपने संपर्क कर सका
0: अच्छा
1: तो वहाँ तमाम पूरी व्यवरा बन जानकारी जी भी नजदीक बैंक हो तो वहाँ पूरी हाँ वहाँ जाए मन पूरी सचिव वगैरह है तो एने थे की अपने पत्तू कर सका जेम अपने नाना थे की तमें आटलो तमार कितनी उम्र थे की
0: मारी उम्र थे की 46 साल
1: 46 साल की उम्र थे की नाना थे की अभी तमन हूँ परिवर्तन लागू थको है पहले हरते रहता था अभी कितलो विकास हुआ है
0: नाना थे की ने दो मिनट हमें मोटा शाह तो हमने संपल पेरवा नहीं मिलता
1: पोकर
0: यही परिस्थिति थी ते स्कूल बनवा जाता तो हमें 6 साल पूर्ति की नवा का मैं ढीला ऊपर तो चली नहीं तो एम बनी बनी ने हमें मुश्किल थी कि हमारे बाप दादा के पैसे देता
1: नहीं
0: आठवीं तक पढ़ाई हुआ हमें बस हमें यहाँ खेती बाड़ी काम करी नहीं ये देखिए बस वही धीरे धीरे थोड़ा बदार अपने होशियार छे तो बस मिल में लगा दे नौकरी करी एक दड़ा
1: पहले अपने हरते मतलब बिजली वगैरह अपन हरते लगी तो अभी कयो विकास
0: पहले देखिए और घना फर्क पड़ी घना फायदा देखियो पहले रोड नहीं था बिजली नहीं थी पानी नहीं है तो आज तो नल लगी जाए घरे घरे बिजली अभी की है એની વાત સપનો અમારો ફાયદો થશે
1: પેલા થકી અભી ફાયદો મળે
0: ઘણો ફાયદો
1: તે ડુંગરભાઈ તમારે ડોકા ડોકરી હે પાસે
0: ના મધર હે મધર મરે આવો
1: તો આની કેટલી ઉંમર હે
0: મધર ની ઓગા લગભગ 75 સાલ
1: 75 સાલ ભાઈ કેટલા હે
0: બે ભાઈઓ
1: બે ભાઈ આને બચ્ચો ભણી રહ્યો છે
0: ના
1: तो डूंगर भाई मैंने आ बता रहे की अपने जो सोरा सोरी भणी रहे थे आनंद हरते हूँ शिक्षा लोगी अगर जाए भणे
0: भाई ने तो हमारा जो लड़का है के ये बे होई में अटल थी भणाई बा अगर ये अपने पूरा नहीं आवे लगू तो पसा हमें इनने भणो सोड़ा वे काम ही न करिया
1: अजी जी भी सोरा सोड़ी रहे आनंद तुम्हें हरते हूँ कही सको
0: इनमें तो पता मारा सोरा ने बहु शादी करा में लगी हुआ थी भणी थी अभी थी तो कॉलेज कर सकते माँ बापे भावी थी मारे घर आई तो मैं बीएड करी तो अभी तैयारी करी रही बीजे सोरो सही रही प्राइवेट स्कूल में भावी रहा
1: भावे
0: अच्छू भावगा बढ़िया ही जाएगा कल अगर गवर्नमेंट सर्वेंट भावगा अच्छे बढ़िया तो कोई अगर कोई बढ़िया काम करेगा कोई बिजनेस करेंगे सरकार भी बढ़िया फायदा करा भी रही है तो इनमें कोई इनको लाभ मिली जाएगा कल बनी तो करेंगे तो कमाई खाएंगा अगर ये
1: डूंगर भाई तमाम थकी मल ने घणो अच्छो लगे डूंगर भाई राम राम
0: राम राम
2: किसान मानधन योजना
3: मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
4: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
2: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
4: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
2: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
4: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संभव पेंशन से सुरक्षित उनका घर
5: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनित में जारी

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान भाई देखो आज डूंगर भाई ने बात भी अपने होनी है जो भी संदेश था ये भी होना है क्योंकि भी संदेश भी अपने होना जरूरी है। डूंगर भाई ने भी खूब बढ़िया जानकारी आली कि भाई सोयाबीन की फसल में जो भी दवा नो छिड़काव अपने कर तो हरते कर मैं कई बातों ने ध्यान रखू है इन हाथे भाई जी ठंडा सोपन है सोर की बात करी भाई देखो अपने खेती ने हाथे हाथे भाई सोर ने भणवा वाला सोर ने आने शिक्षा माते एम भी अपने थोड़ी बात थी जाए तो घनी ताजी बात है। तो डूंगर भाई पूरी विवरण जानकारी आली ने हवे जरा फिर अपने काम में कर लें कि मक्का की फसल में उर्वरक खाद न प्रयोग। किसान भाई देखो अपने मक्का की फसल है इन्हें अच्छी पैदावार लेवाहारो पहले तो अपने संतुलित उर्वरक में प्रबंध करो जो कभी आई वक्त अभी धीरे धीरे अपना फसल है मोटी थी गई है तो जो खातर आलवानु काम है खाद आलवानु काम है यूरिया वगैरह ये समय भी जेने जेम जेम पहले बुवाई करी है लेट थी है एम जेम जेम अपने आग पशी बुवाई कर एम पशु जी भी यूरिया खाद है ए भी आलवानो टेम है आवतो रहे। तो किसान भाई अपने खास करीने जी पहली अपने खाद आला बुवाई ने थकी 20 या 35 दाड़ा में जे वक्त अपनी मक्का की फसल है घुटना तक घुटना नीसा तक एनी उतरी ऊंचाई थी जाए एने प्रति जी भी निराई गुड़ाई करवा बाद 30-35 दाड़ा में तो अपने खाद आला पर 20-25 दाड़ा में भी किसान भाई अलग थका है तो इन्हें मैं ध्यान रखू खास करीने के जे अभी बारिश थी थकी है तो बारिश से थोड़ी कम पड़वा दे जरा कि मैं बारिश कम पड़ेगा तो आप मक्का की फसल में खातर आलंगा तो नहीं लगेगा नहीं तो बस अभी पानी पड़ी रही थकू है बारिश में अपने खातर आल दंगा यूरिया खाद आल दंगा तो वधार पड़ी गयु तो जी भी खातर वगैरह अपने खाद यूरिया नाचू हो दवाई जाएगा अनुवात ध्यान रखे क्योंकि काले परसों हूं गई थी भाई जी भी दुकान माते हैं जी भी मान भी खूब लई जाइ रहा था किसान भाई खतर वगैरह ने नैना जिन्हें जिन्हें जमटा मारी गयो है ये मिली रहा था कहीं तो किसान भाई अनुवात ध्यान रखे ने जिन्हें जिन पास मोटी थे इन वक्त भी अपने ध्यान रखव जरूरी है पर खास कर अभी आ 20-25 दाड़ा ने या 30 दाड़ा में अपने जो मक्का की फसल है एवी थी गई है तो खातर आलेगा थका है तो इन्हें वक्त ध्यान रखे एक तो उभू रही ने साटी दे भाई इन्हें जी जड़ी है इन्हें मक्का ने भोदू है इन्हें नमी ने इन्हें जड़ में साले क्योंकि अभी तो छोटी है नानी है इन्हें जड़े अजी जमती नहीं थी अजी जमी रही थकी है तो इन्हें हरू भाई पूरी वेरा तो अपने मिलंगा तो बस ये कि धवाई जाएगा अनुवाद में ध्यान रखे जेम जेम अपने मक्का ने पौधों ने मोटो थतु जाए तो पीछे जी भी यूरिया खाद है जरा अपने सीटी सीटी अलंका तो पीछे इन जी जड़ है वराती जागत ये खाद है भाई सोसे ने मक्का ने भोदू है जरा मोटो थी जाए तो अनुवाद में किसान भाई है बेने है ध्यान रखे बीजू अपने जे धान वगैरह रोपाई भी थी थकी है तो इन वक्त भी अपने किसान भाई ध्यान रखू है जो वक्त हार वगैरह आरोप करो थको है तो ई अच्छू पानी भराई गयो हो तराइया में अगर नहीं भराई हो तो अच्छू भरावा दे पसी गेड़े गेड़ावे में ई भी रोपा नो समय है तो ई भी रोपी दे क्योंकि सही समय माते पानी अगर सालू है एना समय में रोप वगैरह है मरसा नो है या पसे बैगन टमाटर नो है इवा आना समय में अगर आप रोपी देंगे तो अच्छू वर जाएगा जेने पानी की व्यवस्था है थी तो पहले से भाई रोपी दे दू है तो ये चच्छू फूटान भी थी गई है इन्हें जी बड़ान है ये भी थी गई है तो इन्हें भी देखभाल करव जरूरी है। किसान भाई अगर अच्छी अपने बात करेंगे पर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत।

ग्रामीण श्रोता किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का वही चैनल है। 7:30 होने पर थोड़ी देर में आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम हमारे जयपुर केन्द्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हो चुके हैं और आप प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इपको राजस्थान।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम ने सुन वाला सगला बहना भाई दादा दादी सबने रेणु रो राम राम सा और आपने साथ है नरपत भाई। नरपत भाई आपने भी राम राम सा।
3: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम और रेणु बहन आपने भी राम राम
2: राम राम सा। देखो भाई जुलाई रो आखिरो सप्ताह चल रहे है और खरीफ री फसला खातिर घणो ही महत्वपूर्ण हो गए है यो आखिरी सप्तो। इस समय बरसात रे कारण खेता में फसला री पैदावार तेजी से हो गए है, साथ ही खरपतवार कीड़ा मकोड़ा रोगर उपक्रोप भी बढ़ जावे है। तो आज आपा सब बात कराला किसान भाई बहना सु मिलर ताकि आपा इस मौसम में देखभाल कर सका। तो
3: आपने किसान भाई बार खरीफ की फसल कर रहा है ज्यादा से ज्यादा बार बरसात का मौसम होता है इनमें खरपतवार की जरूरत पड़ जाए तो अपने जो खरपतवार नियंत्रण करवा के लिए काय करना चाहिए जो पोषण फसल चाहिए पोषक तत्व या पानी चाहिए भी को प्रकाश को उपयोग कर लेना चाहिए जिससे अपनी जो फसल चले भी वृद्धि होली अपना उत्पादन की मात्रा बढ़े ली और जुलाई का जो अंतिम सप्ताह चाल भी रहे थे निराई गुड़ाई को आवश्यक समय भी चाहिए और अपन आवश्यकता पड़ने पर जो खरपतवार चाहिए किन कौन सी दवाओं को प्रयोग करा बिल्कुल भी अपन ज्यादा से ज्यादा दवाई पड़ना चाहिए जिससे कि आपने जो खरीफ की फसल चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके।
2: जी सर नरपत भाई इसके अलावा अपने घनी बरसात होगा के कारण खेता में पानी भी बढ़ जावे है खासकर मूंग मोट गंगार और दलहनी फसला में पानी बढ़ जावे सु जड़ा में नुकसान हो सके इसलिए अपने किसान भाइयों ने खेता में उचित जल निकास की व्यवस्था रखनी चाहिए मेड़ और नालिया की जाँच करनी चाहिए और पानी निकास को रास्तों भी साफ करना चाहिए।
3: बार जो आपने कीट रोग से वापर नियंत्रण क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बरसात में ज्यादा हो जाए तो आपने जो फसल चल खरीद ली बिन ज्यादा नुकसान पहुंचाओ इसलिए अपन का करना चाहिए कि जो आपनो धान से बिन तना छेदे गया पत्ती लपेटा गया झुलसा रोग हो जाए सोयाबीन में तना मक्खी हो जाए कपास में जहाँ सफेद मक्खी माहू जैसी कीट नुकसान पहुंचाओ तो अपना किसान ने का करना चाहिए कि अपन नियमित रूप से खेत को निरीक्षण करना चाहिए जो रोग दिख रही कीट दिख रही है बिन अपने जो कृषि विभाग जो भी दवाइयां दवाई ने छिड़क और अपने ये फसल ने ज्यादा ज्यादा बचाना चाहिए।
2: जी सर सही किया थे इसके अलावा किसान भाई बहना ने खाद और पोषक तत्वारी पूर्ति खातिर भी काम करना चाहिए जब पतो चल रहा है की फसल री हालत कियान की है बी के हिसाब से पत्ती के हिसाब से बारे ध्यान रखना चाहिए कि माटी की जांच भी करवानी चाहिए और कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए कि कियान की खाद को उपयोग करना है कौन सा उर्वरक इनमें डालना है और बिना जरूरत ज्यादा रासायनिक खाद को उपयोग भी नहीं करना चाहिए इस बात को भी किसान भाई बहनों ने ध्यान रखना चाहिए।
3: साथ ही साथ आपने जो फसल तो हो रही है लेकिन आपने जो पशुपालन भाई जे ये भी अपना बरसात का मौसम में अपने पशुओं को भी ध्यान रखें क्योंकि पशुशाला की सफाई रखा लो अपने पानी जमा नहीं हुआ दे क्योंकि पशुओं ने स्वच्छ पानी मिल लो अच्छो चारों मिल लो तो वे दूध उत्पादन में ज्यादा फायदा रहे लो क्योंकि बंडा अगर मच्छर माखी ज्यादा रहला तो आपने जो दूध उत्पादन से पशु भाई बहन से बाघ उत्पादन में कमी आ जाए इसलिए भी में बरसात का मौसम में भी अपने पशुओं को साथ के साथ खेती के साथ ध्यान रखना चाहिए समय समय पर जो टीकाकरण है या जो पशुओं की दवाई है भी कोई भी प्रयोग करे अपने पशुओं ने देना चाहिए।
2: जी सर सही किया नरपत भाई इसके अलावा मैं आप ही कहना चाहूंगा की पशुपालक किसान जो है हरियो चारो खातर जवार बाजरा लोबिया और चारा फसलारी बुआई भी कर सके है अच्छी गुणवत्ता और प्रमाणित बीज उपयोग करें और बुआई से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले आ मैं किसान भाई बहनों ने कहना चाहूंगी। इसके साथ ही आपा एक गीत सुन लिया नरपत भाई
3: सुनाओ सा।

0: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: हरिया पुदीना आपा गीत सुनियो। अब आपा किसान भाई बहना सभी आपा जानकारी ले लेवा खरीफ फसला में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी और बचाव का बारे में जानकारी देवा खातर आपड़ा स्टूडियो में पधारिया है, तो लो जानकारी।
2: कार्यक्रम में आपने सागे है डॉक्टर टीकम चंद यादव, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी दुर्गापुरा जयपुर में आप विराजो हो और जी महत्वपूर्ण विषय माथे आज आपा जानकारी लेशा।

0: वो महत्वपूर्ण विषय है खरीफ फसला में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी लक्षण और समाधान। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आप खूब खूब स्वागत। राम राम सर।
1: राम राम।
0: सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हुआ करे है या आवश्यकता हुआ करे है ताकि कसा भाई मैंने पिछान जावे जा फसला में आवश्यकता हुए है भी नहीं तो कमी खलसी आपन है।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आपने सवाल है कि कौन कौन सी फसला के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का लक्षण देखने को मिलेंगे, जो किसान भाइयों सभी प्रकार की फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं और सभी फसलों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, खरीफ के सीजन में अपने बाजरा, मूंग, ग्वार, मक्का, चावल, गन्ना एवं बाकी और भी सारी जो फसलें आप मोट वगैरह बोया करा, सबके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होया कर। सबसे पहले यह पता होना चाहिए किसान भाइयों कि कितना सूक्ष्म तत्व है जी की अपने फसलों में आवश्यकता होया करे है। तो किसान भाइयों, जैसे आप जाना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो अपन दे दिया करा, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों को कभी भी ध्यान नहीं रखते। तो किसान भाइयों, कुल 8 ही सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी फसलों को सर्वाधिक आवश्यकता होती है। उनका नाम की बात करा तो बोरोन, मैग्नीज, जिंक, आयरन, लोहा, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकिल, ये सब है किसान भाइयों।
0: वाह डॉक्टर साहब, आप सूक्ष्म पोषक तत्व का बारे में तो आप बता दिया और जिंक के बारे आप नाम बताया, तो कसा भाई बहना ने आप बताओ कि जिंक पोषक तत्व की कमी का कौन सा लक्षण हुए है।
1: जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसके कमी के लक्षणों को अपने को पहचानना है तो सबसे पहले अपने को पौधे की पुरानी पत्तियों को देखना पड़ेगा। पुरानी पत्तियों में देखोगे आप हल्के पीले धब्बे से दिखाई देने पड़ेंगे और पत्तियों की सिराए हैं उनके दोनों तरफ रंगहीन पट्टी व कम गहरी लक्षण दिखाई देंगे।
0: जी, तो एक समाधान का ही है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जावे है और अगर पतो लागियो कि भाई ये रोग हो गया है तो वो का समाधान का ही है
1: कि सबसे पहले जिंक की कमी के लिए अपने को पौधे की पुरानी पत्तियों को देखना पड़ेगा। जैसे अपन बात करते हैं मक्के की, बात करते हैं मक्के में एक रोग होता है जिसका हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं मक्के में सफेद कल्ली रोग। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि मक्के की पुरानी व नई पत्तियों में सफेद व पीले रंग के पत्ते दिखाई पड़ते हैं। दूसरे लक्षण आप देखोगे मक्के के अंदर पत्तियों का रंग उड़ जाता है, बिल्कुल उड़ावा सा रंग दिखाई देगा आपको। तीसरी बात करेंगे कि पौधे की वृद्धि एकदम से रुक गई है, विकास हो नहीं रहा, पौधा छोटा का छोटा रह गया है। और चौथा लक्षण अपन बात करेंगे कि इसके किनारे जो है वो लाल लाल से दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये जो लक्षण होता है पौधे में जिंक की कमी से होता है। दूसरे रोग की बात करें किसान भाइयों, मूंगफली के लिए, तो मूंगफली में देखते हैं किसान भाइयों, मूंगफली में पत्तियां छोटी छोटी सी रह जाती है और कभी कभी वो हसिया आकार शेप ले लेती है। मूंगफली में जिंक की कमी का ही लक्षण होता है। किसान भाइयों, पहले इन दोनों रोगों के समाधान की बात करते हैं। यदि अपने बुआई के समय आप लोगों ने जिंक फसल के साथ में नहीं डाला है तो किसान भाइयों, आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपनी मिट्टी के अंदर जिंक सल्फेट की मात्रा को मिला सकते हो। यदि आपकी मृदा की पीएच 7.5 से ऊपर है तो उस स्थिति में आपको जिंक की मात्रा को स्प्रे के रूप में उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, स्प्रे करते समय क्या मात्रा और कितने लीटर पानी का घोल बना के स्प्रे करना चाहिए? तो किसान भाइयों, अपने को यदि स्प्रे करना है तो 0.5% या ऐसे बोल सकते हैं कि 10 लीटर पानी में 50 ग्राम जिंक सल्फेट को घोलकर पौधे की पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो उस फसल के अंदर जिंक पोषक तत्व की कमी की पूर्ति हो जाएगी और आपका पौधा स्वस्थ हरा भरा हो जाएगा। जिंक की कमी से कपास और गन्ने में भी छोटी पत्तियां रह जाती है। जो किसान भाई कपास की फसल लेते हैं, उन्होंने देखा होगा कि उनके कपास की पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती है और सामान्य पत्तियों के आकार से छोटा आकार दिखाई देता है या प्याले के आकार की दिखाई देती है। तो किसान भाइयों, यह भी एक जिंक की कमी के ही लक्षण होते हैं। आपने देखा होगा कि कपास के पौधों में बीच बीच में पीलापन आ जाता है और सिराए जो हरी रह जाती है, ये भी जिंक की कमी के ही

0: लक्षण है। किसान भाइयों, ये लक्षण कपास में मुख्य रूप से 1 से 2 महीने के पौधे में दिखाई देते हैं। 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाए या 0.5% का घोल बनाकर पत्तियों पर स्प्रे करें।
1: डॉक्टर साहब, कई बार आपा देखा कि करसा भाई बेना ने या शिकायत रेवे है कि फाल को नहीं बनते हो, अगर सूक्ष्म तत्व की कमी से यह हो गए तो इसका कई लक्षण है, और अगर पिछाण गए वो तो इसको समाधान की कर करे।
0: बिल्कुल सही सवाल है आपका। आपने बोला कि दलहनी फसलों में फूल नहीं आते, फलियां नहीं बन रही, या कभी कभी देखते दाने नहीं बन रहे। देखो किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं है कि ये किसी रोग की वजह से या कीट की वजह से पौधे के अंदर फूल फल या दाने नहीं बन रहे। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि बोरोन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व होता है
1: जी।
0: आपने ये देखा होगा कि कभी कभी पौधे की नई पत्तियां गुच्छे के समान बन जाती है, बिल्कुल गुच्छा बन जाता है, या डंठल के आकार का बन जाता है, तना या फल फटने लग जाते हैं। ये सारे कारण जो है किसान भाइयों, बोरोन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। यदि आपने अपनी फसल में ऐसे कोई भी लक्षण देखे हैं कि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर आने वाले समय पर आप ऐसे लक्षण देखते हो कि फल फूल नहीं बन रहे, फलियां नहीं आ रही, तो किसान भाइयों इसके लिए अपने को बोरोन सूक्ष्म पोषक तत्व फसलों को देना अति आवश्यक है। तो इसकी बात करते हैं कि बोरोन क्यों महत्वपूर्ण है। देखो किसान भाइयों, बोरोन का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है कि दलहनी फसलों में आपने जब जड़ों को उखाड़ के देखते हो तो उसमें गांठें पाई जाती है। ये जो गांठें होती है इसका मुख्य जो काम होता है ये बोरोन के द्वारा होता है, और ये जो गांठें होती है फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। किसान भाइयों, इसके लिए अपने को सबसे बढ़िया जो है बोरेक्स नाम का एक उर्वरक आता है, जिसका 20 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए, या आपको 0.5% का घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते। किसान भाइयों, यदि फसलों में बोरोन की कमी देखने को मिलती है तो बहुत सारे रोग होते हैं, जिनमें मैं बात करूंगा। पहले एक रोग के माने टमाटर के रोग। देखा होगा किसान भाइयों, आपने टमाटर के फल को, तो टमाटर का फल फटने लगता है। देखो किसान भाइयों, ये फल का फटना मुख्य कारण क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा की अधिकता होने के कारण अपना जो टमाटर का फल होता है वो फटने लगता है। अब ये कैल्शियम की मात्रा क्यों बढ़ जाती है किसान भाई? कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा का निर्धारण बोरोन पोषक तत्वों के द्वारा किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि बोरोन पोषक तत्वों की कमी हो रही है, मतलब कि अपना टमाटर का फल फट रहा है, उसमें दरारें आ रही है, या फिर आपने देखा होगा तने के पास में चारों तरफ दरारें से देखने को मिलती है। ये गोलाकार दरारें मुख्य रूप से बोरोन पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। उन किसान भाइयों के लिए भी बोरोन बहुत महत्वपूर्ण है जो फूल गोभी की फसल लेते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा फूल गोभी का जो तना होता है कभी कभी खोखला दिखाई पड़ता है। किसान भाइयों, ये तना खोखला होना मुख्य रूप से बोरोन सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के ही लक्षण है। इस सब के समाधान के लिए आपको 20 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर बोरेक्स नाम के उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए, या स्प्रे के रूप में 20% सोल्यूबल के नाम से उर्वरक आता है, उसका 0.5% घोल बनाकर फसल की पत्तियों पे स्प्रे करना चाहिए।
1: अब एक और सूक्ष्म पोषक तत्व है लोह पोषक तत्व, तो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग अपनी फसल में उत्पन्न हो सके है, या इसकी कमी ने आपनों किसान भाई किया पहचाने, और अगर कमी की पहचान कर ली अपनी फसल का मायने लोह पोषक तत्व की कमी है तो इसको समाधान किया करे।
0: किसान भाइयों, जिस प्रकार से अपने खून के अंदर लोहे की मात्रा बहुत जरूरी होती, उसी प्रकार से पौधे के शिराओं में, मतलब उसकी नसों में भी लोहा पोषक तत्व बहुत जरूरी होता है
1: जी।
0: पहले लोहे की कमी को पहचानेंगे कैसे? किसान भाइयों, आपको सबसे पहले पौधे की नई पत्तियों को पहचानना पड़ेगा। नई पत्तियों का आशय है पौधे की जो ऊपर वाली पत्तियां होती है, जो कच्ची है, अभी पूर्ण रूप से पकी नहीं है, मैच्योर नहीं हुई है, उन पत्तियों को देखोगे तो नई पत्तियों के शिराओं के बीच में, मतलब जो शिराएं चारों तरफ की, उनके बीच में पीला पीला सा रंग दिखाई पड़ेगा। कभी कभी इसकी बहुत अधिक कमी हो जाने के कारण किसान भाई पत्ती पूर्ण

0: पूर्ण रूप से सफेद हो जाती है। लोहा यदि कम हो रहा है तो अपने को मुख्य रूप से पत्ती पीली और सफेद दिखाई पड़ती है। बात करते क्या मुख्य कार्य है। देखो किसान भाइयों, फसलों के अंदर लोहा पोषक तत्व है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है। आपको मैं मारवाड़ी भाषा में बात करता हूँ कि पौधे का हरा बनाने का काम करता है। जिस प्रकार से आप यूरिया डालते हो, नाइट्रोजन डालने से पौधे की पत्तियां हरी हो जाती है, उसी प्रकार से लोहा तत्व भी पौधे की पत्तियों को हरा करता है। और ये पौधे के अंदर श्वसन क्रिया, जैसे अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसी प्रकार से लोहा पौधे के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। मतलब उसके अंदर कोई भी पोषक तत्व जा रहा है या पौधे को जीवित रखना है तो उसमें ऑक्सीजन के वाहक का काम लोहा तत्व करता है। और बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं जो पौधे को अच्छी ग्रोथ, वृद्धि, विकास देते हैं, उसकी वृद्धि में लोहा पोषक तत्व है बहुत अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। धान एवं गन्ने के अंदर क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। क्लोरोसिस का आशय है पत्तियों के रंग का कम होना, हरा रंग वहां से कम हो जाता है और पीलापन आ जाता है। ये गन्ने में मुख्य रूप से कैल्शियम की अधिकता के कारण होता है। किसान भाइयों, जैसा कि राजस्थान की मृदाओं के बारे में अपन बात करते हैं, राजस्थान की मृदाओं में लवणों की मात्रा अधिक है। लवणों की मात्रा समझते हैं, यहाँ की मृदाओं को अपन बोलते हैं कि खारी मृदाएं हैं। अपने यहाँ की मृदाओं की पीएच 7-8 से ऊपरी होती है। इस स्थिति में अपने मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार की मृदाओं में मुख्य रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व हमेशा ही अम्लीयता पे या कम पीएच पे उपलब्ध होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, इसको समाधान क्या करें किसान भाई?
0: समाधान की बात करते हैं तो इसके लिए अपने को आयरन सल्फेट के नाम से एक बाजार में उर्वरक मिलता है या किसी भी सरकारी संस्था से, सोसाइटी से आयरन सल्फेट नाम के उर्वरक को लेके आना है जो 19% की मात्रा का मिलता है।
1: जी
0: किसान भाइयों, इसके समाधान के लिए अपने को 25 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर आयरन सल्फेट उर्वरक की मात्रा मिट्टी में मिलानी चाहिए, फसलों के ऊपर स्प्रे करना चाहिए।
1: खरीफ फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी लक्षण और वाको समाधान, ये महत्वपूर्ण विषय माथे जानकारी दिया डॉक्टर टीकम चंद यादव, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी दुर्गापुरा जयपुर से आप मराठे स्टूडियो में पधारिया हो। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय में से आप समय काटकर हमारे स्टूडियो तक आया हो और करसा भाई बहना ने इतनी महती जानकारी दिया हो, एक तई आप रो घना मानसु धन्यवाद सा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अपना किसान भाई बहना ने बहुत ही अच्छी और चौकी जानकारी दे बतानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कोरो कोरो को नहीं देवा तो इके लिए एक सुनो गीत।

0: पपैयो सुनियो अब घड़ी की सुइया बता रही है कि अब देव आज्ञा रेणुज ने और
1: नरपत सिंह ने
0: राम राम सा
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको राजस्थान।
3: किसान साथियों कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार चौला मूंग उड़द मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर सेवन से बोल रहे हैं और आप सुनिए संसद समीक्षा।
1: आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक है पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन

करीब ढाई बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्तानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यह चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तिन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनाने

के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंदी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस अप्रतिम

शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

आपने सुना संसद की साप्ताहिक समीक्षा का प्रसारण। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना, फिल्म तमाशा का, मोहित चौहान की आवाज में, गाने के बोल लिखे इरशाद कामिल ने, संगीत दिया यार रहमान ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमिर चैनल से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अगला गीत सुनिए, फिल्म है जन्नत, के की आवाज में, गीत निर्देशन सईद कादरी का, संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

फिल्म जन्नत का ये गीत आपने सुना केके की आवाज में। गीत निर्देशन था सईद कादरी का, संगीत दिया प्रीतम ने। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला व अंतिम गाना सुनिए, फिल्म है, फिल्म का नाम है तुम मिले, मोहित चौहान की आवाज में सुनिए। गाने के बोल लिखे सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का।

क्यों मिले फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर जनन से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को है और थोड़ी देर में पहले आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, फिर 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का, 9:00 सुनिए News@9 का प्रसारण। रात्रि 9:15 पर सुनवाए जाएंगे उर्दू में समाचार और रात्रि 9:30 पर सुनिए राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट प्रशांत कुमार। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अगले 15 मिनट में हम आपको रूबरू कराएंगे दिन भर की तमाम खेल खबरों से और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है खेलों की दुनिया में खास। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैंप के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खेल सुर्खियों पर।
1: भारत ने दूसरे 2020 मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में अजय बढ़त बना ली सुधार।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में झिंडू कुमार ने हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पद दिलाया।
1: उधर मुक्केबाज जादूमणि ने राष्ट्रमंडल खेलों में किया दमदार आगाज, राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।
0: रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह की भारतीय जोड़ी ने लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में टोंगा को हराया। पुरुष सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल का मुकाबला मलेशियाई खिलाड़ी से जारी।
1: उधर विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, बनाई फाइनल में जगह।
0: और यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने ओमान और पाकिस्तान को शिकस्त दी।
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में बढ़त बना ली है। हरारे में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ईशान किशन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सिद्धार्थ,
0: बिल्कुल, और अगर हम इस पर नजर डालें तो टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए। भारत की से शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 44 गेंद पर 81 रन की धमाकेदार पारी खेली।
1: और उनका बखूबी साथ दिया है उप कप्तान तिलक वर्मा ने, जिसने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 29 गेंद पर नाबाद 60 रन बनाए। इस पारी के दौरान तिलक ने 3 छक्के और 5 चौके भी लगाए।
0: कप्तान शिया सैयद ने 25, युवा वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन की पारी खेली। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 8, रिंकी सिंह ने 12 और शिवम दुबे ने नाबाद 6 रन बनाए।
1: अगर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बात की जाए तो ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड अंगारावा, ब्रेड इवेंस, न्यूमैन न्यान ह्यूरी और

0: ब्रायन बेनेट ने एक एक विकेट अपने नाम कर लिए और 220 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत निराशाजनक रही और उसने 50 रन के अंदर ही चार विकेट गंवा दिए। ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों में 32 रन, वहीं रायन बर्ल ने 20 रन की पारी खेली। फिलहाल तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है और अगर हम एक नजर भारतीय गेंदबाजों की प्रदर्शन पर अगर हम डालें तो क्या कुछ है इनका प्रदर्शन।
1: सिद्धार्थ, अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी तो करते ही है, वो
0: जी प्रशांत
1: शीर्ष बल्लेबाज हैं टी20 में, लेकिन आज उन्होंने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया। 3 ओवर में 17 रन देकर उन्होंने 3 विकेट झटके हैं। साथ ही साथ यश ठाकुर, जिनको आज इस मौका मिला है इस मुकाबले, उन्होंने 2 विकेट लिया है। प्रिंस यादव ने भी लगातार आईपीएल से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे सिद्धार्थ, और आज के मुकाबले में भी उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं रवि बिश्नोई की बात कर ले, शिवम दुबे की बात कर ले, तिलक वर्मा की बात कर ले, सबने एक एक विकेट अपने झोली में डाले।
0: बिल्कुल, और यहां पर खास बात करनी होगी प्रशांत अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने इकोनॉमी जो है 6 की उनकी रही और 17 रन देकर उन्होंने 2 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट हासिल किए। तो अभिषेक शर्मा की जो शानदार गेंदबाजी थी उसने भी भारत की जीत में एक अहम भूमिका निभाई है।
1: और इसी के दम पे सिद्धार्थ, जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 13 गेंद शेष रहते ही 129 रन पर सिमट गई और जिसके कारण भारत को 3 मैचों के श्रृंखला में 2-0 की बढ़त मिल गई है।
0: बिल्कुल, और भारत का जो शानदार प्रदर्शन था, जिस तरह से पहले मैच में भारत ने प्रदर्शन किया फिर दूसरे मैच में, तो ये जो लगातार कंसेक्यूटिव जीत है इसने खिलाड़ियों के मनोबल को काफी बढ़ा दिया है और एक बार फिर भारतीय टीम जो है वो अपने पूरे दमखम के साथ तैयार है और अगले मैच के लिए। तो ऐसा अब सबकी नजर ये है, एक्सपेक्टेशन प्रशांत ये है कि भारतीय टीम कहीं क्लीन स्वीप ना कर दे जिम्बाब्वे को, तो उस पर पूरी नजर है खिलाड़ियों की।
1: बिल्कुल, जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली है, पहले आयरलैंड से वो हार गए, फिर उसके बाद इंग्लैंड से हार मिली है, लेकिन उसके बाद इस सीरीज में भारत बैक ऑन ट्रैक दिखती नजर आ रही है। और आपने जैसा बताया कि उम्मीद की जाए कि भारत अगला मुकाबला जीत कर क्लीन स्वीप करेगी और एक बार फिर अपना परचम लहराएगी।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय फैंस हैं उनका भी, उनकी भी नजर तीसरे मुकाबले पर रहेगी और खिलाड़ियों के भी जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मैच में किस तरह से जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो अपना दमखम दिखाते हैं, वो अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। और अगर हम देखें प्रशांत, तो जीत जो भारत की हो रही है वो बड़े अंतर से हो रही है, मतलब इस तरह से जो जीत हासिल हो रही है क्योंकि पिछला जो प्रदर्शन था पीछे की, जैसे कि अभी आपने बताया कि भारत का पिछले दिनों जो प्रदर्शन रहा है वो उतना अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं भारत ने एक तरीके से कमबैक किया है और बहुत ही अटैकिंग जो खेल होता है उसको दिखाने की कोशिश करी है।
1: बिल्कुल, और जैसे हम क्रिकेट में बात भी करते हैं, तीनों प्रारूप जो है हमारे, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, तीनों में अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी से लगातार। अभिषेक शर्मा ने आज 3 विकेट लिया, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज, और क्षेत्र रक्षण में भी अच्छी हो रही है वापसी। तो लगातार जो इंग्लैंड में जो कमी रह गई थी, आयरलैंड में जो कमी रह गई थी, इस सीरीज में भारत दमखम के साथ वापसी की और उम्मीद करें कि तीसरा मुकाबले भी जीतेगी।
0: बिल्कुल, तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे खिलाड़ी इस श्रृंखला में क्लीन स्वीप करेंगे, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पदक दिलाया। पैरा पावर लिफ्टर ने पुरुषों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में कांस्य पदक देश के नाम किया और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडू को देश के लिए पहला पदक जीतने पर बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झंडू कुमार की यह उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और वर्षों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।
0: और इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी झंडू को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग 190 किलोग्राम का जबरदस्त लिफ्ट करके भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहला मेडल जीता। पूरे देश को उन पर गर्व है। झंडू कुमार ने अपनी इस जीत पर क्या कुछ कहा, आई

0: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
1: और प्रशांत झंडू की इस जीत पर हम और तुम और इसके साथ ही पूरा देश उनसे क्या कुछ कह रहा है।

0: प्रशांत क्यों ना कहे कि क्या खेला रे शाबाश, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड पर झंडू का के नजर डालें तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब थी। एक समय पर उन्होंने ई रिक्शा चलाकर और सब्जी बेचकर घर का गुजारा किया था। इन संघर्षों के बावजूद झंडू ने पदक जीतकर देश के भावी खिलाड़ियों के लिए मिसाल कायम किया। क्या कुछ कहोगे प्रशांत?
1: बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस प्रतियोगिता में लगातार अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों से होता आ रहा, लेकिन पहला पदक तो पहला ही पदक होता है। इस वर्ष भारत को पहला पदक दिलाना एक वर्चस्व स्थापित करने की तरह है।
0: बिल्कुल, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाज जदुमणि सिंह मंडेनगमाम ने राष्ट्रमंडल खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में जदुमणि ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्कॉटलैंड के इरन करन को 5-0 से हराया। तो प्रशांत क्यों ना सुन लेते हैं की रिपोर्ट।
1: बिल्कुल,
2: ग्लासगो के एसईसी हॉल में खेले गए इस मुकाबले में जदुमणि शुरू से ही आखिर तक विपक्षी मुक्केबाज पर पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने तेज पंच, सटीक निशाने और मजबूत डिफेंस के दम पर अपने प्रतिद्वंदी को पूरे मैच में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सभी 5 जजों ने हर राउंड में जदुमणि को विजेता माना। घरेलू दर्शकों के समर्थन के बावजूद स्कॉटलैंड के एरन कलन भारतीय खिलाड़ी की गति और रणनीति के आगे बेबस नजर आए। भारतीय मुक्केबाज के एक के बाद एक पंचों का एरन कलन के पास कोई जवाब नहीं था। इसी जीत के साथ जदुमणि राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब 26 जुलाई को उनका मुकाबला पाकिस्तान के रहमान से होगा। जदुमणि अगर पाकिस्तानी मुक्केबाज के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं तो वह क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लेंगे। जदुमणि को भारत की ओर से पदक का बड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है। जदुमणि की जीत से भारतीय बॉक्सिंग टीम ने प्रतियोगिता में मजबूत शुरुआत की है।
0: जी हाँ, जदुमणि ने अपना जो जादू दिखाया है प्रशांत, वो तो उस समय सबके सिर चढ़कर बोल रहा है, और क्यों ना बोले, इतना शानदार प्रदर्शन जो किया है।
1: और सिद्धार्थ, उधर भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने आज स्कॉटिश इवेंट कैंपस में हुए कड़े मुकाबले में कनाडा के क्योमा अल हमदीह को हराकर पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 26 साल के पूर्व कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स चैंपियन ने 4-1 से जीत हासिल की।
0: जिन्हों सचिन सिवाच और क्योमा अल अहमदी के बीच हुए मुकाबले की शुरुआत बेहद रोचक रही। दोनों बाएं हाथ के मुक्केबाजों ने रिंग के बीच में एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। सचिन की तेज टाइमिंग और साफ कनेक्शन शुरुआती राउंड में अहम साबित हुआ। उन्हें थोड़ी बढ़त मिली क्योंकि 5 में से 3 जजों ने इसे 10-9 से उनके पक्ष में स्कोर किया, लेकिन फाइनल जिस तरह से आज हुआ और जिस तरह से उन्होंने 60 किलोग्राम इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, उनको हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम का सलाम।
1: और बात नॉन बॉल्स की भी कर लेते हैं सिद्धार्थ। रूपा रानी, तिर्की और पिंकी सिंह की भारतीय जोड़ी ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाते हुए महिला पेयर्स के सेक्शन बी में टोंगा को टाई ब्रेकर में 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। रूपा और पिंकी ने टोंगा की पेरिस बेकर और मिलिका नाथन के खिलाफ पहला सेट 5-2 से जीता था सिद्धार्थ।
0: क्या बात है, ये शानदार जो जोड़ी का प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जो पूरा सफर रहा है काफी अच्छा रहा है। रूपा और पिंकी दोनों ने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला 4 टीम का वो हिस्सा थी, तो उनसे हम सभी को बेहद उम्मीद है। और दूसरी ओर पुरुष सिंगल्स के सेक्शन डी के मैच में भारत

0: के शीर्ष लॉन बॉल्स खिलाड़ी पुतुल सोनोवाल का सामना मलेशिया के इज्जत शमीर से जारी है। फिलहाल वो 4-8 और 4-9 के स्कोर से पीछे चल रहे हैं।
1: बात अब स्क्वॉश पर भी कर लेते हैं। अनाज सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में आज रात उनका सामना मिस्र की रुकिया सलीम से होगा।
0: जी हाँ, और हम सबकी नजर आज रात उस मैच पर लगी होगी। और आपको बता दें कि अनाज सिंह जोशाना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, और आज पूरे देश को फाइनल में उनकी जीत का इंतजार रहने वाला है। और इन्होंने जिस तरीके से हम ये देखें कि सेमीफाइनल मुकाबलों में बारब को 11-3, 8-11, 11-4 और 11-6 से जिस तरीके से हराया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है।
1: बात हॉकी पर भी कर लेते हैं सिद्धार्थ। मस्कट में FIH यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर्स पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने मेजबान ओमान को 10-1 से हराने के बाद पाकिस्तान को 7-3 से शिकस्त दी। हालांकि महिला टीम को इसमें प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा।
0: और चलते चलते नजर डाल लेते हैं निशानेबाजी पर। हांग झोंग में भारत के सोनम तरमस्कर ओलंपियन इला वेनिल वलारविन ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। और समय हमें अब अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। और प्रशांत, जिस तरह से आज का दिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा, जिस तरफ एक तरफ क्रिकेट में हमने जो सफलता हासिल करी है वो अपने आप में बहुत उमदा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है।
0: तो अब इसी के साथ हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों

0: को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रानका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रही है।

0: सम्मानीय की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉ सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी

0: अतिरिक्त कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यही चैनल है। रात्रि के 9 बजे ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म आर्टिकल 15 से। आवाज अरमान मलिक की थी। गीत के बोल शकील आजमी के और संगीत अनुराग सेकिया का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मन मर्जियां से। आवाजें एमी बिर्क और शाहिद माल्या की थी। गीत के बोल शैल के और संगीत अमित त्रिवेदी का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया। जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म संजू से, आवाज सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल शेखर अस्तित्व के और संगीत विक्रम मोन्ट्रोज का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर,
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज के फनकार
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

तक आपने सुनी और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपीसीपी ने जीएस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

1963 में जीएस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने वर्षों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब।

संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया।

इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है। कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

साठ के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है। हाँ।

25 जुलाई 1996 को जी एस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जी एस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

발생되는데 쓰일 것이며 때문이다 하옵소서. 아까시로 반성할까 하지 않을 해. 아라트리키 가스파지야 빛이 나서 해 풍성기

आज मौसम कितना खुशगवार हो गया, खत्म सभी का इंतजार हो गया। बारिश की बूंदें गिरी इस तरह से, लगा जैसे आसमान को जमीन से प्यार हो गया। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं। और सुनते हैं लता मंगेशकर और चित्रकार की आवाज में आजाद फिल्म का गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का है और संगीत सी रामचंद्र का है। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बन के, आया है अब तो मौसम के सा खुमार बन के, मेरे दिल में यू ही रहना बस तुम प्यार प्यार बन के।

मैं अपने लता मंगेशकर और चित्रकार की आवाज में आजाद फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं हजरत जयपुरी का लिखा गीत शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आते जाते मौसम का सिलसिला जारी रहे हर रोज हम मिलते रहे और फासला बाकी रहे।

0: कपाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है।
1: अभी अपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में धरती फिल्म का गीत सुना, और अब सुनते हैं शैलेंद्र कल का गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में मुकेश की आवाज में मधुमती फिल्म से। ये बारिश, ये हसीन मौसम और ये मस्त हवाएं, लगता है आज मोहब्बत प्यार की बाहों में है।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पांचवाड़ा के नए चैनल से। आइए आप सुनते हैं अगली पेशकश दिल्ली का ठग फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, बोल मजरू के हैं और धुन रवि की है। प्यार करने का मौसम नहीं आता है, पर जब तुम सामने आते हो तो हर मौसम मजेदार बन जाता है।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: और आप सुनते हैं अगला गीत, पाकिस्तान फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की है। कैफ भोपाली के गीत की धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने। बारिश आई थी, बादल गरजे थे, हर जगह उनके फिजाए मौसम महकाने के चर्चे थे, पर एक हम ही नजरों का मजा न ले पाए, यहां तो तेरे इम्तिहानों से निकल जाने को तरसे थे।

आप सुनते हैं अगला गीत प्यार का मौसम फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है। नमनगर है नजरू और मासी की आरडी बर्मन की है। कोई दिन इस कदर उतर जाता है जिसके बाद हर मौसम रंगीन नजर आता है, उसी ने देखो तो दिल बेचैन हो जाता है और उसे देख लो तो उस पर

प्यार का मौसम इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। आप सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर लोफर फिल्म से। मौसम हुआ सुहाना दिल को सार हो गए, मुस्कुराए वो और हम कर्जदार हो गए।

अपनी मनोदशी की आवाज में लोफी फिल्म का गीत सुना। और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हंजोली फिल्म का दो गाने, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। महबूब के बिना हर मौसम उदास सा लगता है, महबूब हो पास तो हर मौसम खास सा लगता है।

ने अपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हमजोली फिल्म का गीत सुना। और अब सुनते हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की नई चिड़िया आवाजों में दूसरा आदमी फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत कल्याण राजेश रोशन का है। ये मौसम आज बड़ा ही रंगीन है, ठंडी हवाओं के साथ फूलों का खिलना जीवन को सुकून देता है।

दूसरा अपने स्वयं का गीत अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की मिली जुली आवाजों में सुना। आप सुनते हैं अगली पेशकश बंदिश फिल्म से। आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की है, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। बेईमान मासूम से पूछो कुछ हरकत कर रहा है, बताता नहीं क्या, ये मेरे हम सफर से डर रहा है।

आपने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में बंदिश फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं अगला गीत मजरू का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आक्रमण फिल्म से। मौसम का रुख बदल रहा है मेरा मन मचल रहा है कहता है महबूब से मिलने अब दिल नहीं संभल रहा है।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आक्रमण फिल्म का गीत सुना और सुनते हैं फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश जुदाई फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की है, गोलायन बख्शी की है, धन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। तेरे इंतजार का मजा ही कुछ और है, अभी उसके आगे तो तेरे इस मौसम का मजा भी कमजोर है।

0: गए।
1: अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में जुदा फिल्म का गीत सुना। यही शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, बिछड़ के लोग भी ज्यादा जिया नहीं करते। जो आने वाले हैं मौसम उनका एहतराम करो, जो दिन गुजर गए उनको गिना नहीं करते। इसके साथ फिल्म संगीत अगले हैं।

है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की महेश सिंह से बोल रहे हैं, एफएम गोल्ड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रामका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मानी नहीं है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीतियां होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी व्यक्ति की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो

0: कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।